0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे न, खुश्क ऐं बीरोनक की स्किन, हर इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट? पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन, जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे। सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30 to 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर, राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842। अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी

तारिक फजल चौधरी के पी में एमरजेंसी बाबत ठहराउ कौमी असेंबली में पेश किया। अक्सरियत राय से मंजूर किया। अपोजिशन ठहराउ खिलाफ ऐवान में एहतजाज कंदे नारेबाजी कई। केपीए में गवर्नर राज की मंजूरी लाए पार्लियामेंट जो गडियल इजलास अज थो। तारिक फजल चौधरी पार्लियामेंट जो गडियल इजलास अज सुबह 11 बजे।

गुलशन हदीस जे फलकनाज सोसाइटी में घर मां पंज भातियुनि जा लाश हथ अचण वारे वाके जी जांच कमेटी कायम। डीएसपी बिन कासिम, डीएसपी मलीर सिटी इंचार्ज आईटी ऐं ब एसएचओ टीम जो हिसो हूंदा। पुलिस ज़रियनि मुझ मोबाइल फोन ऐं पिस्तौल फॉरेंसिक जांच लाइ मोकिलिया वेंदा। शाज़ेब जे वेझनि दोस्तनि जा बि बयान रिकॉर्ड कया वेंदा। ताज़ो कुझु दोस्तनि शाज़ेब सां दोस्ती छो ख़तम कई हुई, शाज़ेब घर कॾहिं ऐं कंहिंखां ख़रीद कयो, हुन बाबति बि जांच कई वेंदी।

नवाब वली मोहम्मद के कच्चे वारे इलाके में हथियारबंदन की फायरिंग बजना कत्ल अलीबाद थाने के हद में हथियारबंदन फायरिंग कर बिन जन के कत्ल कयो। पुलिस है मकतूलन की सुणप निसार पली ए गुलजार माशी के नालन से थी है। जांच जारी है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
6: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
5: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
5: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
7: सुपर वाइट।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज़ गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-8022।

0: अरे न खुश्क ऐं बीरोनो की स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिंमें आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।

0: એસ અમા આશા અસ્પતાલ નોતકાણી ચોક માતલી વધિક માલુમાત લાય બુડી 247 32 41 200 ટી.
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जो इलाज MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे. डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे. याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे.
2: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली. वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370 34 95 244.
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी. मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी. मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी. जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं. घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी. राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो. टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं. नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा. एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली. राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163.
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली. डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी. औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन.
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी. याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो. निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे. निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी. वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 02-310-31-43-842.
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
1: सुनते रहो GFM 90.4.
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
7: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
7: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन.
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
6: 03132525786.
7: जी हाँ, 02-315-25-7786.
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़.

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.0।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: कलमा पढ़ो ते हिक भेरा देहर पढ़न बिया बल बल पढ़न दे यार सजर दी हुंदी ता कु जुदाई मुस्लिम विचों काफर थी वन ए केड़ी हुंदी अदाई यार मुस्तफा जैसी जीवे एरी करे न अंधाई।
1: अर्दा मजबूर आशिक के अंदर यार।

रोकिनता त तू मैंने में वो सम्मेलन न वन तुंजा दुश्मन तोखे होते तुंजा वेरी बारे वजंदा अर्ज करे पियो मां मौत खान थो रजा महबूब जो दीदार जरूर करनो पोंदो मां त घणो पंहिंजे पाण खे रोचा पर छा करियां मुंहिंजी दिलि नथी रहे।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: एमरजेंसी ए गवर्नर राज जी मंजूरी ला पार्लियामेंट जो गडल इजलास 11 वगे थी रयो आए छह नुकाती एजेंडा जारी एमरजेंसी ए गवर्नर राज बाबत सदारती फरमान ऐवान में पेश कयो वेंदो आईन जे आर्टिकल 232 तहत एमरजेंसी ए 234 तहत गवर्नर राज जी मंजूरी ला धार ठहरा पेश कयो वेंदो सेनेट ए कौमी असेंबली में केपीए में गवर्नर राज एमरजेंसी जी मंजूरी ॾेई चुकी आहे सिंध हुकूमत कणक रिलीज पॉलिसी जारी करे छॾी अॼ खां फ्लोर मिल्स ऐं अटे चकिन खे 2.5 मण वारी बोरी 1,250 रुपियनि में जारी करण जो ऐलान पहिरें मरहले में पुराणी कणक जारी करण जो फ़ैसिलो कयो वियो सेप्टेम्बर खां घटि में घटि 6 महीननि ताईं फाल रहंदड़ फ्लोर मिल्स ऐं अटे चकिन खे ई कणक मिली सघंदी ओधर ते कणक जारी करण ते पाबंदी जस्टिस मुनीब अख्तर वक्ती चीफ जस्टिस जे उहिदे जो हलफ़ खणी वरितो जस्टिस जमाल मंदोखेल जस्टिस मुनीब अख्तर खां हलफ़ खणायो चीफ जस्टिस यया आफरीदी निजी दौरे ते इंग्लैंड वियल 21 अक्टूबर ते वापसि ईंदो

मीर रज़ा केस लाइ अदालती कमीशन जी रिपोर्ट सिंध हुकूमत हवाले। कमीशन जो चवण आहे त रिपोर्ट घरू खाते हवाले कई वई आहे। अदालती कमीशन 15 ॿुधणनि दौरान 49 ॼणनि जा बयान रिकॉर्ड कया। मीर रज़ा जो लाश 29 जुलाई ते गुलिस्तान जोहर मां मिलियो। अमरीका ईरान खिलाफ इम्कानी फौजी कार्रवाई जो मनसूबो तयार करे वरितो। अमरीकी टीवी दावा कई आहे त ट्रंप इंतज़ामिया पारां ईरान खिलाफ़ ॿीहर हमिलो करण लाइ मनसूबो तयार करे वरितो आहे। हमले में मंदर ऑफ आल हम्ज़ जे इस्तेमाल ते बि गौर कयो वेंदो।

0: मीरपुर बुरड़ो जे गोठ अला वधायो चनो जे प्राइमरी स्कूल में बिन महीनन खां उस्ताद मुकरर न थियण खिलाफ एहतजाज गोठाणनि चयो आहे त उस्ताद जे रिटायर थियण खां पोइ स्कूल बिन महीनन खां बंदि पयल आहे। ॿारनि जी तालीम तबाह पई थिए, स्कूल में सहूलियतुनि जी बि खोट आहे। जल्द उस्ताद मुक़रर करे ॿारनि जी तालीम तबाह थियण खां बचाई वञे। ऐं बख्शापुर भरिसां घर में चोरीअ जी कोशिश दौरान मज़ामत ते घर धणी ज़ख़्मी, टे चोर बि सोघा। ॻोठ भुटो में चोरीअ दौरान मज़ामत ते गोलियूं लॻण सबबि घर धणी बदल भुटो ज़ख़्मी थी पियो। खेसि गणती जोगी हालत में रहीम यार खान इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। चोरी वारदात दौरान भाॻियनि टिनि चोरनि खे सोघो करे पुलिस हवाले करे छॾियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: सानत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोर औरतन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी।

0: मॉर्फिन लाइ हर दवा 10 सैकड़ो रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM
3: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03132525786।
4: जी हा, 131525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: वधिक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तैयारी हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सा पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद
1: मोरो नौशहरो मीरपुर खास
2: लाड़काना
1: सखर
2: गूंज रही है हर जगह पर
1: सिंध की आवाज
2: जीए FM 88 नेटवर्क।

चाहत ही पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत ही पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर शोइंग इन टू डी रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आर जी रुखसार सिंध की आवाज। हेलो, कैसे हैं आप? आई होप कि जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सर्कुल एकदम एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय एक्सा कॉस्मेटिक्स। सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय एक्सा कॉस्मेटिक्स जो कि आपको बना रहे हैं बेहद खूबसूरत, बे इंतहा खूबसूरत, बेहद हसीन। तो अगर आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जाजी भी नजर लगना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, सो दैट आप यूज करेंगे सुपर वाइट के प्रोडक्ट, और कौन से प्रोडक्ट हैं, क्यों यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम प्रोग्राम में वक्त की बात करेंगे तो जी वक्त हुआ जाता है 11:16 जो कि पाकिस्तान का मेरा वक्त है। तमाम तो लोग घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक में हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। बट लदनवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बगल से खुदा खैरियत मौजूद और तो खुदा खैरियत मतलब

सालगिरह है उनको कहेंगे मनी मनी हैपेंस ऑफ द डे हैव अ बिजी टू यूज के अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ नहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और चबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं गुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन व सहलन मरहबा बखैर आगे लेजी आया नुसरत बिस्मिल्लाह बाजार शाम निहाओ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुलजार है.

तो प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना हम इंक्लूड करेंगे जो कि होगा बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल. तो इसको हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे, इसी के साथ हम आगे चलेंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स.

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
1: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
1: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
3: सुपर वाइट।
4: अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबुह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई और औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 0310-3143-842।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
7: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
7: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331-252-5786।
7: जी हाँ, 0331-552-5786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मोआसी से कांधी न थिया पर इने किसे जी की के शायद खबर न हुंदी त यो कीअं थियो ऐं छो सडियो त जनी लाए मोआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जड़ा बीमार थियो इहो किसो तव्हांखे आ सही करे थो ॿुधायां आश्क वेचारो जड़ा बीमार थियो पंहिंजे माइटनि ऐं दोस्तनि खे चई त मूंखे पंहिंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आउं उते मरंदुसि जो मुंहिंजो महबूब मुंहिंजो कुल्हे कांधी थिए

डाउन किया है मेरा प्रोग्राम सुन के, तब भी आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। और जो हैदराबाद वाला नंबर है सेम, उस पर भी इसी तरीके से आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो हैदराबाद वाला जो नंबर है, हैदराबाद वालों के लिए मुमताज हसन खान का नंबर, तो उनका नंबर आप लोग नोट डाउन कर लें। जहां पे अवेलेबल ना हो हैदराबाद में, वहां पे प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवा लें। और इसके अलावा कोई फीडबैक देना हो तो वो भी दे दें, अगर प्रोडक्ट्स के बारे में कोई मालूम चाहिए हो तो वो भी ले लें, ठीक है। तो नंबर है जी हैदराबाद वालों के लिए 0370-2568-321। और सुपरवाइज के प्रोडक्ट, बहुत अच्छे प्रोडक्ट और बहुत खूबसूरत और बहुत अमेजिंग किस्म के प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज कर रहे हैं, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, करने चाहिए। क्योंकि सुपरवाइज के जितने भी प्रोडक्ट हैं आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए बनाए गए हैं। सो सुपरवाइज की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम और सुपरवाइज की ब्यूटी क्रीम और सुपरवाइज की वाइटामिन सी क्रीम, सुपरवाइज की स्ट्रॉबेरी क्रीम, सुपरवाइज की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम, सुपरवाइज की राइस ब्यूटी क्रीम, इसके अलावा सुपर वाइट की फेस वॉशेज जिसमें विटामिन सी फेस वॉश, और इसके अलावा जी स्ट्रॉबेरी फेस वॉश आता है सुपर वाइट वालों का, सुपर वाइट का टर्मेरिक फेस वॉश, इसके अलावा सुपर वाइट का राइस फेस वॉश, और इनके सोप्स भी आते हैं, ठीक है। सुपर वाइट का राइस सोप आता है, ऑयल कंट्रोल सोप आता है, इसके अलावा जी सुपर वाइट वालों का ऑयल कंट्रोल सोप भी आता है, सुपर वाइट की ऑयल फ्री एक्ने क्रीम आती है, सुपर वाइट की एंटी फ्रैकल क्रीम भी आती है, और सबसे मजे की चीज जो है इनका ब्यूटी सीरम बूस्टर, और सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर के साथ साथ सुपर वाइट सीरम भी आता है जी, सुपर वाइट राइस सीरम, ठीक है, सुपर वाइट राइस सीरम भी आता है और सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर भी आता है। अब ये सब क्या है वो आपको मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। तो सुपर वाइट के जितने भी प्रोडक्ट हैं जिसमें सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम तमाम उन लोगों के लिए जिनकी स्किन टाइप ऑयली है, और स्किन टाइप ऑयली होने के साथ साथ उनके फेस के ऊपर पिंपल्स हैं और कलर बिल्कुल डल है, कॉम्प्लेक्शन डाउन है, अपने कॉम्प्लेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है, गोरा चिट्टा रंग करना चाहते हैं, हो नहीं रहा है, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिल रही है जो कि बिना साइड इफेक्ट चिट्टा गोरा रंग कर दे और खूबसूरत बना दे, अब सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम जो कि आपके इन तमाम मसले मसाइल का हल है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहे मर्द हो खवातीन हो ऑयली स्किन की वजह से एक्ने भी बहुत ज्यादा आ जाती है स्किन पे, एक्ने आने की वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल, बहुत ज्यादा डाउन दिखने लगती है, ठीक है, आपका चेहरा कभी भी फ्रेश नजर नहीं आता इस ऑयल की वजह से। तो इस ऑयल को कम करने के लिए और अपनी डाउन कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए आप लोग यूज करेंगे सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, ठीक है। सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम जो कि आपकी डाउन कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगी, आपकी रंगत को निखारेगी, फेयरनेस देगी और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगी विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो बहुत सारे लोग जो कि इसके फायदे तो इतने दिन से सुन रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक डाउट ये भी है कि अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या विदाउट एनी साइड इफेक्ट हमें इसके रिजल्ट मिलेंगे? तो बिल्कुल विदाउट साइड इफेक्ट इसके रिजल्ट मिलेंगे।

सुपर वाइट की ऑल फ्री ब्यूटी क्रीम जिसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर। सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी जो क्रीम के रिजल्ट है ना वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे और बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएंगे और बहुत ज्यादा आप खूबसूरत नजर आएंगे। ठीक है, तो सुपर वाइट का ये ब्यूटी सीरम बूस्टर जो कि आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें, और ऐड करने के बाद अपने क्रीम के रिजल्ट को डबल से ट्रिपल कर सकते हैं। और मजीद इसके रिजल्ट अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग सुपर वाइट की का फेस वॉश भी यूज करेंगे, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। ठीक है, सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज करेंगे, इससे डैज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज ही मार्केट जाएं और बाय करें। मार्केट जाके क्या बाय करना है, सुपर वाइट की ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश और साथ में सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर। अच्छा, ब्यूटी सीरम बूस्टर की खासियत यह है कि ब्यूटी सीरम बूस्टर जो है ना आप लोग क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं, आप जो मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसमें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और किसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग इसको, अपनी ब्लीच क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग फेशियल्स जब करते हैं तो उनके स्टेप्स में भी जो है वन बाय वन ऐड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक पिंच। ठीक है, एक एक पिंच हर स्टेप में। सो डैड आपको इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके जो फेशियल के या जो आपके ब्लीच क्रीम के रिजल्ट हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे और आप दिखेंगे इंस्टेंटली बहुत ज्यादा खूबसूरत।

0: अच्छा साथ साथ आप लोगों की कॉल्स भी एंटरटेन करते हैं 03000113488 के ऊपर. सर लगाओ गाने सुनाओ सेगमेंट. हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: मकार
0: जतोई भाई कैसे हैं? ठीक ठाक मजे में. जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी जी प्रोग्राम आप गाज सुनाएर आपका प्रोग्राम मेरे ख्याल से.
0: जी
1: मैंने कहा आपका प्रोग्राम आज सुना है और सुनते रहेंगे.
0: अच्छा वैसे नहीं सुनते?
1: जी जी
0: वैसे नहीं सुनते आप?
1: हेलो
0: जी जी वैसे प्रोग्राम नहीं सुनते? हेलो
1: आवाज नहीं आ रही.
0: अब आ रही है मेरी आवाज?
1: हेलो
0: ओके जी आवाज नहीं आ रही. वेरी बैड.

0: ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

Okay, जी, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स. सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स जो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप लोगों के लिए. इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 03000113488. साथ साथ आप लोग मुझे 8881 पे भी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पेज के ऊपर, तो कमेंट और मैसेजेस की तरफ मूव करते हैं. सरफराज अली का कमेंट आया है. सरफराज अली गढ़ी बरोज फ्रॉम कराची, वेलकम टू द शो. मुनव्वर अली कहते हैं लाजवाब शो. सरफराज कहते हैं गुड मॉर्निंग, दिस इज अल्ताफ अली गढ़ी बलोच फ्रॉम कराची. ओके, आयुष मोहम्मद गोला हमें सुन रहे हैं जी जिला जैकबाबाद से. इसके अलावा नजीर खोसो हमारे साथ साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच नजीर खोसो. और इसके अलावा रशीद खोसो भी हमें सुन रहे हैं, थैंक यू रशीद खोसो. हैदराबाद से आप हमें सुन रहे हैं, हैदराबाद में भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हैं. अगर ना मिले तो हेल्पलाइन नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं हैदराबाद वालों के लिए, जो सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर है जो कि आप डायल कर सकते हैं 03702568321. ठीक है, ये नंबर है, इसको डायल करेंगे हैदराबाद वाले. और जो सखर और लालकाना वाले हैं वो डायल करेंगे हेल्पलाइन नंबर सुपर वाइट वालों का 03147754462. ठीक है, 03147754462.

इसके साथ साथ आज का टंग ट्विस्टर क्या है वो आपको बताऊंगी. तो आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरह होगा कि पहले हम गाना प्ले कर दें क्योंकि हमारा गाना जो है ना ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो रहा है. सो इसी के साथ हम आगे मूव करेंगे. इसके साथ नहीं, इसके साथ हम आगे मूव करेंगे. इसके साथ

0: सुनाओगे आज का टंग ट्विस्टर है चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं। ठीक है, ये कहना है चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं, ये कहना है। और देखते हैं कि ये ज्यादा ज्यादा कौन कह पाता है। 03000113488 के ऊपर आप लोग कॉल करेंगे। ठीक है, चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें और कॉल करें। तब तक मैं आपको एक फार्मूला के बारे में बताती हूँ जी। और फार्मूला जो है ना वो आप लोग बना सकते हैं सुपर वाई के प्रोडक्ट से ही। सुपर वाई के कौन से प्रोडक्ट हैं जिनसे आप एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपको एक अदद बेहतरीन फार्मूला बिल्कुल भी नहीं मिल सका है। अगर आपने बहुत सारे फार्मूला ट्राई किए हैं और उससे आपको साइड इफेक्ट हुए हैं तो आप नहीं होंगे, क्योंकि सुपर वाइट वाले कभी भी अपनी क्वालिटी और मयार पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और इसी वजह से इनके प्रोडक्ट सुपर से भी ऊपर हैं, तभी इन्होंने नाम भी रखा है सुपर वाइट। ठीक है, सुपर वाइट के लिए, सुपर वाइट फार्मूले को बनाने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एक अदद सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम लेनी है, एक अदद सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम एंड एक अदद सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्नी क्रीम। ठीक है, एक अदद सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्नी क्रीम और सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम। ठीक है, एक्नी क्रीम और ब्यूटी क्रीम दोनों ही ऑयल फ्री में आती हैं, ये ले लें। तीसरी चीज आप लोगों ने लेनी है सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर। और इन तीनों चीजों को एक जार में अच्छे तरीके से निकाल लें, क्योंकि जो एक्नी की क्रीम है इनकी वो ट्यूब की वेरिएंट में आती है, उसको अच्छे तरीके से निकाल लें। इसके अलावा जो ब्यूटी सीरम बूस्टर है वो आप लोग लास्ट में इसमें ऐड को अच्छे तरीके से मिक्स करें, इतना मिक्स करें कि तमाम चीजें आपस में यकजा हो जाएं। और जब ये यकजा हो जाएं तो इनको जार में जो है आप लोग स्टोर कर लें। स्टोर करने के बाद रात को सोने से पहले अपने फेस को वॉश करें सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से। सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से फेस को वॉश करने के बाद ये फार्मूला रात को सोते हुए अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें डेली बेसिस पे। 3 दिन में आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे और 3 दिन में आप कहेंगे कि वाह क्या रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो खूबसूरत बना देने वाले रिजल्ट्स होंगे और हसीन बना देने वाले रिजल्ट्स होंगे। और एक हफ्ते में विजिबल वाजे फर्क आप देख सकेंगे, आप ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आखिर ये कमाल हुआ कैसे है। ठीक है, तो हेल्पलाइन नंबर आप लोग नोट डाउन करें, सखर और लाड़काना वाले 03147754462। इसके अलावा हैदराबाद वाले डायल करें 03702568321। अच्छा, टंग ट्विस्टर एक बार फिर से आप सुन लें। चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं। ठीक है, ये कहेंगे। नेक्स्ट कॉलर लेने जा रही हूँ। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: आबादी इमाम ने मेरे वाले क्या साल है पटेल।
0: कौन से प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई मेरे?
1: जिंदगी गुलजार है।
0: तो आपने इसको इतना मतलब के दुखी अंदाज में क्यों गाया है?
1: ये होता नहीं,
0: चले मेरी नाइस। और सुपर वाइट के प्रोडक्ट यूज करते हैं? सुपर वाइट जब प्रोडक्ट यूज करना आयो खरीद कडे गंदो खरीद
1: सोमर जड़ी
0: सोमर जड़ी। ओके, टंग ट्विस्टर बुधो है
1: बिल्कुल बुधा पर ये टंग ट्विस्टर तंग नहीं दो ये तंग ताज नहीं बुधा नहीं मैं तंग नहीं
0: तो वहाँ के नहीं दो
1: वहाँ अन्ना वाली तो को गाना घूमता है तुमने कहना बुधा नहीं तंग।
0: ओके, तहां के गानो बुधराई था। ठीक है, पेंजो खोर सारो ख्याल रखो। जी ओके ठीक है ओके अल्लाह हाफिज जी। और 03000113488 चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं, ये कहेंगे। एक और कॉलर। हेलो, कौन बात कर रही है, कहाँ से? हेलो, اللہ حافظ.
1: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 بس باجی جلال اساں کی بدھا باجی
0: اوکے اللہ حافظ 03000 1134 88

0: कीजिए एक और कॉलर. हेलो हेलो
1: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: पवन क्या जो सुझा वाला सुन रहे?
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई?
1: जी हाँ.
0: ओके, कौन सा सुन रहे हैं?
1: सुपर वाइट.
0: सुपर वाइट का प्रोग्राम सुन रहे हैं. सुपर वाइट के कौन से प्रोडक्ट यूज किए हैं? कौन सी क्रीम?
1: नाम समझ नहीं आ रहा, बताइए.
0: सुपर वाइट ही तो है नाम इसका.
1: हाँ, सुपर वाइट.
0: ओके जी, ये सुपर वाइट ही नाम है. सुपर वाइट का शो है तो सुपर वाइट ही नाम हुआ ना क्रीम का.
1: जी हाँ,
0: है ना. अच्छा, टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे?
1: जी
0: टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे? चले फिर प्रोग्राम सुने. थैंक यू सो मच. और मेक श्योर वही लोग कॉल करें जो कि प्रोग्राम सुन रहे हो और जिन्होंने टंग ट्विस्टर सुना हो, वरना उन लोगों की मेहनत जाया हो जाती है कॉल मिलाने की जो कि टंग ट्विस्टर सुनते हैं और फिर बोलने के लिए कॉल करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी कॉल नहीं लग पाती. सो मैं ऐसे लोगों को मौका देना चाहती हूँ जो इस सेगमेंट के लिए ही कॉल कर रहे हों. एक और ट्राई करेंगे फिर हम गाने की तरफ चलेंगे. हेलो, वालेकुम असलाम, कौन कहाँ से?
2: दीदी
0: कैसे? ठीक ठाक. इतने अरसे बाद कॉल कर रहे हैं.
2: बिल्कुल, जो है ना, बहुत अरसे के बाद ना आज ही मैंने आपका शो सुना और कॉल लगाई है.
0: चले जबरदस्त. अच्छा, और प्रोग्राम सुन रहे हैं, किसके दामन से है
2: प्रोग्राम आपका? अभी अभी मैंने सुना थोड़ा सा और कॉल भी आपको ना फौरन ही लग गई. पहले ही नंबर लग गई.
0: अच्छा, टंग ट्विस्टर है, अगर मैं बताऊं तो आप बोलेंगे?
2: अच्छा, टंग ट्विस्टर कौन सा है? कोशिश होगी इंशाल्लाह.
0: आपने कहना है कि चाचा चमचम चटपटी चटनी लाते हैं.
2: ये तो ये मुश्किल है.
0: चले ये मुश्किल है. चले जो आसान है वो बता दें. जो आसान है वो बता दें जल्दी से.
2: आसान बस आपका शो है, जबरदस्त शो है, सुन रहा हूँ. और अभी दोस्त हैं सुन रहे हैं मेरे साथ, रबर नोफिल पोड रहे, अली शेर चना है और बहुत भी दोस्त हैं. बस बहुत सारे दोस्त हैं और आपको सलाम, सबको सलाम.
0: ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. और इसी के साथ हम

ओके जी, इसी के साथ हम गाना प्ले कर रहे हैं. हम सुनते हैं जी कोक स्टूडियो का लेटेस्ट सॉन्ग, दैट इज रंगीन. ठीक है, इसको सुनते हैं.

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे न खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहे में आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन दीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: जेकर तमा बवासीर जे तकलीफ रत अचन सख्त सूर वेहण या हलण में तकलीफ जड़न मसलन में मुफ्तला आयो ऑपरेशन का डुजो था हाणी परेशान छण की जरूरत न आए इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी आराम लाए आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलने जो हंध हर आचर ते सुबह जो नाए

0: खां शाम जो पंजे वगे ताईं हमजा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-24-01-287 सुकून एतमाद सेहतमंद जिंदगी ॾांहुं कदम
1: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842। अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली।

0: कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज
2: अशिया अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो यादि रखंदा। दायमी बुखार ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन अक्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदा। सारिफ़ हुजे स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन में बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
4: जी हा, 2315-2576।
3: GAFM रेडियो,
4: सिंध जो आवाज़।

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स. सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट के बहुत सारे प्रोडक्ट जिनसे आप हैंड एंड फीट फार्मूला भी तैयार कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन कर लें. हेल्पलाइन नंबर है सखर और लड़काना वालों के लिए 03-14-77-544-62. इसके अलावा जो हैदराबाद वाले हैं वो मुमताज हसन खान से राबता करेंगे. उनका नंबर है 03-70-25-68-321. सखर और लालकाना वाले डायल करेंगे 03-14-77-544-62.

इसके अलावा जी आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, सेंड हमें मैसेज कर दिया है महबूब अली मोरो सिटी से, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आपका प्रोग्राम सुपरवाइज जिंदगी गुलजार है वेरी नाइस है, और आप जलाल को प्ले नहीं कर रही हैं। अच्छा, जलाल को प्ले करना है, ओके। इसके अलावा हमें सफदर बलोच ने बहुत सारे मैसेज किए हैं, आप कैसी हो, कुछ दिनों के लिए कहाँ गायब थी आरजे? मैं बिल्कुल यही थी, कहीं गायब नहीं थी, ठीक है, थैंक यू बलोच। इसके अलावा सफदर बलोच ने बहुत सारे शेर लिख भेजे हैं, थैंक यू सो मच बलोच। इसके गाने की तरफ भी हम चलेंगे एक और सुपर वाई के प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे।

कॉल कीजिए 03000113488 के ऊपर आप लोगों की लाइव कॉल्स को इंटरटेन किया जा रहा है. सो कॉल कीजिए. और आज का जो टंग ट्विस्टर है वो है चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे ले लेकर चाटते हैं. ठीक है, ये कहना है आप लोगों ने. देखते हैं कि ये कौन कौन सही सही कह पाता है. और गाना करेंगे हम चेंज. एक और कॉलर. हेलो हेलो हेलो. ओके जी, आवाज नहीं आ रही है. 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप.

0: ओके जी, एक और कॉलर. हेलो. ओके, हेलो हेलो. वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ सरदर्द. तुम्हारे लिए इतना अच्छा टंग ट्विस्टर लेकर आई हूँ, किधर गायब हो?
1: मेरी तबीयत ठीक नहीं,
0: आपका अच्छा तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है तबीयत को?
1: मलेरिया.
0: थोड़ा सा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही.
1: मलेरिया हुआ था मुझे.
0: मलेरिया हुआ था? अच्छा, अब कैसी हो? अब ठीक हो? चलो जबरदस्त, अल्लाह ताला तुम्हें जल्दी से सेहतियाब करे. और तुम पहले से भी ज्यादा अच्छे अच्छे टंग ट्विस्टर बोलो, और आज का टंग ट्विस्टर सुनाए. एक बार रिपीट करो. चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारी ले लेकर चाटते हैं.
1: चाचा चमचम चटपटी चटनी चटकारी ले लेकर चाटते हैं. चाचा चमचम चटपटी चटनी चटकारी ले लेकर चाटते हैं. चाचा चमचम चटपटी चटनी चटकारी ले लेकर चाटते हैं. चाचा चमचम चटपटी चटनी चटकारी ले लेकर चाटते हैं. चाचा चमचम चटपटी चटकारी ले लेकर चाटते हैं. चाचा चमचम चटपटी चटनी चटकारी ले लेकर चाटते हैं. चाचा चमचम चटपटी चटनी चटकारी ले लेकर चाटते
0: हैं. वाह, मलेरिया में भी इतना अच्छा कह लेती हो टंग ट्विस्टर.
1: मलेरिया में तो स्पीड ज्यादा हो गई है.
0: मलेरिया से स्पीड ज्यादा हो गई है?
1: हाँ,
0: आवाज
1: ठीक से आ रही है.
0: किसी स्पीड वाले मच्छर से मलेरिया हुआ होगा. है ना?
1: शायद मच्छर की भी स्पीड इतनी तेज होगी ना.
0: हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. चलो जल्दी से ठीक हो जाओ सरदर्द. कुछ और कहना है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. जीरो 3000113488. और जो लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, एक बार कॉल करने के बाद अगर उनकी कॉल दोबारा आती है तो मैं ड्रॉप कर दूंगी. ठीक है, ड्रॉप सीन हो जाएगा. इससे पहले कि हो जाए, मैं आपको पहले से बता रही हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए. ठीक है, 3000113488 इसके ऊपर कॉल और टंग ट्विस्टर, और साथ साथ सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर सखर और लाड़काना वालों के लिए स्पेशली सखर और लाड़काना वाले डायल करेंगे 03-14-77-544-62. ठीक है, इसके अलावा जो है

ओके एक और कॉलर. हेलो हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? ओके कहाँ से बात कर रहे हैं? ओ कॉल ड्रॉप हो गई. अच्छा साथ साथ सुपरवाइज की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग. ये वो वेरिएंट है जिसको आप अपनी कोरियन ग्लास स्किन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. तो अगर आप अपनी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन बनाना चाहते हैं तो सुपरवाइज की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम प्लस सुपरवाइज का स्ट्रॉबेरी फेस वॉश यूज करें.

स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम के बारे में हम बात कर रहे थे. तो सुपरवाइज की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं कोरियन ग्लास स्किन बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये तैयार की गई है कोरियन फार्मूला के साथ. और अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले सुपर वाइट की कोरियन फार्मूले से तैयार की गई स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जिसमें स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट मौजूद हैं ये बनाते हैं, और इसके रिजल्ट्स आपको 3 दिन में विजिबल नजर आते हैं, ठीक है. तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कोरियन एंड ग्लास स्किन हो, सो इसको यूज किया जा सकता है. प्लस अगर इसके रिजल्ट को डबल से ट्रिपल बनाना चाहते हैं तो सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश भी यूज किया जा सकता है, ठीक है. और इसके अलावा जी आप इनके सोप्स को भी यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं. तो सुपर वाइट का ब्यूटी सोप ऑयल फ्री ब्यूटी सोप, इसके अलावा सुपर वाइट का राइस कोलेजन सोप भी इस्तेमाल किया जा सकता है. सुपर वाइट का राइस कोलेजन सोप जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी सर से लेकर पांव तक कोरियन ग्लास स्किन होना पॉसिबल है, ठीक है. लेकिन आपने इसको कंटिन्यूसली यूज करना है. और अगर आप कोरियन ग्लास स्किन बनाने के लिए सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम यूज करते हैं तो उसमें भी आप सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है. ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड करके आप उसके रिजल्ट्स को डबल से ट्रिपल बना सकते हैं और रिजल्ट्स को इनहेंस कर सकते हैं. सुपर वाइट का राइस सीरम भी ऐड किया जा सकता है सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम में, ठीक है. तो ये रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे पहले 3 दिन के अंदर. और अगर कहीं पर प्रोडक्ट्स ना मिल रहे हो तो हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता किया जा सकता है. हेल्पलाइन नंबर है 03147754462. इसके अलावा जो हैदराबाद वाले हैं वो डायल करेंगे 03702568321, ठीक है. इस पर आपका करेंगे मुमताज हसन खान का नंबर है 03702568321. इसके अलावा सखर और लड़काना वाले डायल कीजिए 03147754.

सुनाती हूँ, ठीक है? जाते जाते आपको गाना सुनवा के जाएंगे, बेफिक्र हो जाएं। और ये अभी तक के सारे कमेंट्स जो कि आप लोगों ने भेजे और मुझे रिसीव हुए, महबूब अली मोरो सिटी से हमें मैसेज कर रहे हैं, सुपर वाइट का शो जिंदगी गुलजार है, इनको बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ फाइनली लास्ट गाना हम प्ले करेंगे, और दिस इज मी आरजे रुखसार, साइंस आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमानी खुदा, अल्लाह हाफिज़।

0: मुंह की खानी पड़ी हिंदुस्तान को, भारत को, मोदी सरकार को। उसके बाद आपका ख्याल है वो ऐसे ही बैठे रहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर उनके जहन में अभी भी चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी कौम को कुछ बताना है कि वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान से किस तरह हजीमत का शिकार हो गया है। और दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान देखें, वहां हॉस्टाइल रेजिम्स ऑन बोथ साइड, और वो आप प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, वो नहीं आपका सामना करना पड़ता, क्योंकि आमने सामने जो जंग हुई है उसमें उनको बुरी तरह ब्लडी नोज हुई है। तो वो अब प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं। आप प्लीज होशमंद हो जाए कि हो क्या रहा है नाक के नीचे। और आपके सूबे जो आप कहते हैं ड्यूरैंड लाइन, देर इज नो सच थिंग एज ड्यूरैंड लाइन, या अंग्रेज ड्यूरैंड लिख के गया है, दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, देर इज अ बॉर्डर एंड देर मस्ट बी अ पासपोर्ट। मैं अपने मुल्क का तहफ्फुज़ क्यों नहीं करूं, करूं, लेकिन आप उसका खुला दरवाजा तो ना छोड़ें। आपके रिश्तेदार हैं तो पार्टीशन हुआ तो पंजाब और सिंध के रिश्तेदार नहीं थे सर? आगे मैं नहीं बात करना चाहती इन चीजों का, लेकिन यू हैव टू हैव वन पॉलिसी, वन स्टेट, एंड यू हैव टू फाइट टूगेदर, नॉट अगेंस्ट ईच अदर। हम सब समझते हैं कि आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनना चाहते हो या हो, सबके दिलों में अपने मुल्क के लिए कोई ना कोई मोहब्बत होती है। मैं नहीं यकीन कर सकती कि नहीं है। आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, आपकी इज्जत होती है, लेकिन प्लीज फ्यूचर को देखें, आगे देखें, किस बंद गली में आप उस दिन मायदा फाड़ के जब गए, किस भटाड़ा भी नहीं आपने, आपने कहा ठीक है, मगर आपकी लोकल की आदत ने आपको नहीं करने दिया। उन्होंने जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा, खड़े होके वादा किया, हल्फ लेके वादा किया आवाम से कि मैं दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, वो अपना एजेंडा लेके फिर रहे हैं। आप लोग अपना एजेंडा संभालें, क्या एजेंडा है ये भी बता दें हमें। मुझे तो आज तक समझ में आई व्हाट वाज द लॉन्ग मार्च फॉर, मैंने पूछा भी था। अगर एक फर्द वाहिद के लिए तो उनसे भी माजरत कर लें, वक्त आ जाएगा, हर चीज का वक्त आता है। कल आज हम कि कोई इकतदार में कल कोई और होता है, ये कोई ये सब आनी जानी चीजें हैं। जेल की सलाखें सबने देखी हैं, यहां सब बैठे हैं, किसने नहीं देखी हैं? तो भाई आप तय कर दें कि हमने आगे जाना कहां है और सूबा क्या करेगा। कोई किसी को शौक नहीं था, किसी ने कहा नेकेड ग्रैब फॉर पावर, व्हाट पावर? केपी को लेकर क्या कोई करेगा? वहां तो हमने जंग में बसना है, दहशतगर्दी की शहादतें देनी होगी, मजीद देनी होगी, क्या मिल रहा है वहां से? हम सब अपने अपनी अपनी इमरजेंसीज अगेंस्ट एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड पॉवर्टी संभालें। देखें लोगों के हालात क्या है जमीन पे। पिशावर में आज स्कूल गिरा है, अल्लाह ताला ऐसा सानिया किसी को ना दिखाए, बच्चे शहीद हुए हैं। ये तो कहीं भी हो सकता है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूं, दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ दीज डिस्कशंस, लेकिन प्लीज होश के नाखून लें और वापस आए सोच के कि आपने आगे जाना कैसे है। डिक्टेशन ना दें जी, ना हम आपको डिक्टेशन देते हैं, हम इस किसी पोजीशन में नहीं है। इक्तदार में तो बंदा और भी आजिज होता है, तो डिक्टेशन ना दें। जैसे आपके खान साहब तो ये कहते थे ना, माई वे और द हाईवे, बाहर मुल्क के बाहर जाके कहते थे कि मैं सीख।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
5: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
5: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
7: सुपर वाइट।
8: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
9: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
10: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन

0: क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारी जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजय दत्तड़े तमाम खूब सतनासु में सुने समातन के मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुलू दुआ के संबंध है शहादों की बारिश लासुल खजानों के साथ हुआ है पल से पल पता से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नीचे जाता जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांस से दर्द से खुशी तक जल्द दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो हर तरह से आपकी खूबसूरती के लिए यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से आपके चेहरे पर वर्क करेंगे, किस तरह से आपकी खूबसूरती में इजाफा लाने के साथ साथ आपको हसीन खूबसूरत और दिलकश बना देंगे। तो जनाब यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स है और वाइट एज के प्रोडक्ट्स है जिनके बारे में आप लोगों को इस पूरे प्रोग्राम में बताया जाएगा। ओके जी सुनने वाली तमाम समातों को वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अपने हाल चाल बताते जाइए सुनिए लिसनर्स अंतकिफा हालत कैसे है आपकी हालत उम्मीद शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करें होंगे तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक यानी कि पूरे 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले हैं प्रोग्राम के अंदर। आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करेंगे और आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से आप लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स से अपनी खूबसूरती में जो है ना 4 चांद लगा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर टो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोर, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331-252-5786।
3: जी हा, 3135-5786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

आपके चेहरे पर जितने भी डार्क स्पॉट्स होंगे या फिर जितने भी क्रेकल्स हैं, रिंकल्स वगैरह हैं, वो चीजें भी खत्म हो जाती हैं। आपके चेहरे की स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाती है और आपको रिजल्ट्स जो मिलते हैं ना, अच्छे वाले रिजल्ट्स, परफेक्ट वाले रिजल्ट्स, वो सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से मिलते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को सेफ रख सके, यानी कि आप अपनी खूबसूरती की हिफाजत कर सके, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप सारे लोग ही लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बाउंड्रीज रखी गई है कि हाँ लड़कियां लगाएंगी, लड़के नहीं लगाएंगे, या लड़के लगाएंगे, लड़कियां नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप चाहे लड़के हैं, लड़कियां हैं, सभी लगा सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, आपकी खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए आप ऐसा कीजिए, अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप यूज करेंगे तो आपको जनाब इतना प्यारा निखार मिलेगा, इतनी प्यारी जो है ना आपको खूबसूरती मिलेगी। इसका जो नरम और खूबसूरत एहसास है ना, आपकी स्किन केयर रूटीन को मजीद खास बना देता है। आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाती है और अच्छी तरह से आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहती है। आपकी जल्द की शख्सियत जो है ना, वो ऐसा फील होता है कि भाई ताजगी का एहसास हो चुका है। आप हमेशा रिफ्रेश जो है ना वो फील कर रहे होते हैं। आपकी स्किन जब फ्रेश होती है ना तो आपको अच्छा महसूस होता है, आप कहीं जा पाते हैं सुकून से और आपको एक तसल्ली सी होती है कि भाई हमारी स्किन जो है ना अब बड़ी अच्छी है, क्योंकि आपके चेहरे पर कोई भी इस तरह का एक्ने नहीं बचा, कोई भी इस तरह का निशान नहीं बचा, कोई भी रिंकल नहीं बचा। अब आप अपनी उम्र से बहुत छोटे लगने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं कुछ अच्छा, कुछ अफोर्डेबल और कुछ ऐसा जो कि भाई बहुत प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हो, तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर रहे हैं तो साथ में डी स्किन फेस वॉश भी परचेज कीजिएगा। ये दोनों चीजें आपको साथ में मिल जाएंगी और साथ में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या ही कमाल के, क्या ही वाओ वाले जो है ना वो रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को क्लीन रखते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, तो आपके चेहरे पर जो है ना ग्लो और निखार आना स्टार्ट हो जाता है। आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो भाई अच्छा फील करेगी, तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन पर जो प्रॉब्लम्स आ जाती ना वो भी नहीं आएंगे। तो बिल्कुल अपनी स्किन को अच्छा फील कराइए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगाइए और अपनी जरा जो है ना खूबसूरती का स्टैंडर्ड जरा हाई रखा करें। ऐसा नहीं कि आपको जो भी बताया जाता है, जो भी प्रोडक्ट बस आप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाने से जो ऐसा होता है ना कि अगर आप महंगे महंगे फेशियल्स कराने जा रहे हैं और आप लोगों को ऐसा होता है कि भाई फेशियल तो आपने हफ्ते हफ्ते में कराना है या महीने महीने में कराना है, लेकिन ऐसा वाला सीन बना दें कि आप बस मार्केट जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप घर बैठे लगा सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ये वाला फायदा आपको मिल रहा है कि एक तो ये मुनासिब पैसों में आपको मिल रही है, दूसरा आपका टाइम भी बच रहा है और दूसरा आपको रिजल्ट्स जो मिल रहे हैं वो बहुत से भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन का फेस वॉश हो, लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। उनके अलावा तव्हां खे जेके नंबर्स ॿुधाया वञनि था प्रोग्राम जे अंदर, नंबर्स ते तव्हां राबितो कंदा, राबितो करण खां फौरन बाद ई पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा रहो। ऐं पंहिंजे खूबसूरती जो ख़्यालु रखो, बाबा जो तव्हां न रखंदा त केरु रखंदो। अगरि तव्हां पंहिंजे खूबसूरती जो ख़्यालु न रखंदा न त दुनिया बि तव्हांखे ईअं समुझंदी त तव्हां ईअं आहियो बस। भाई अपना ख्याल रखिए, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखिए और अपनी खूबसूरती को सबसे आगे रखा करे। और उनखां अलावा अगर तव्हां असांजे प्रोग्राम में मौजूद आहे, तव्हांखे चवंदा भली करे आया, होर सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हां सां कंदासीं, तव्हांजा फीडबैक्स बि असांखे मिलंदा वञनि था, पोस्ट खे तव्हां लाइक ऐं शेयर कंदा हलो। ऐं मूंखे ॿुधायो त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करे ॾिठी आहे या अञा ताईं कोन करे ॾिठी आहे। उन खां अलावा जेको आहे मूं तव्हां खां सवाल पुछियो त तव्हांखे तव्हांजा घर वारा जेके आहे त सजाऊं ॾींदा हूंदा, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे सजाऊं ॾींदा। अॻे त बाबा ईअं थींदो न त पंहिंजे ॿारनि खे जेके न वालदेन इलाही सजाऊं ॾींदा हुया, ऐं हुननि सजाउनि में वरी का सज़ा अहिड़ी बि थी सघे थी जेका तव्हांखे लॻंदो हुजे, हाणे तव्हां यादि कंदा हूंदा, तव्हां चवंदा हूंदा पापा हीअ ॾाढी फनी सज़ा असांखे मिली आहे, ऐं तव्हां हुन ते खिलंदा हूंदा त हाणे हीअ बि का सज़ा ई जेका असांखे असांजा वालदेन ॾींदा हुआ। सो मूंखे ॿुधायो जल्दी, अहिड़ी कोई सज़ा तव्हांजे ज़हन में आहे जेका तव्हांखे नंढपण में मिलंदी हुजे ऐं तव्हां हुनखे हिन महिल यादि करे मनी मन मुस्कुराईंदा आहियो, वरी चवंदा बाबा हीअ बि हाणे का सज़ा हुई। सो मूंखे ॿुधायो 888-218 फेसबुक ते तव्हां मूंखे ज्वाइन कंदा हलो था, तव्हांजा फीडबैक्स बिल्कुल मूंखे मिलनि पिया, पैनल ते बि तव्हांजा मैसेजेस आहिनि, पर हिते कॉमेंट आहे जी, मां जल्दी कॉमेंट इन लाइ पढ़ंदी आहियां वरना तव्हांजा कॉमेंट जेके न उहो मथे भॼी वेंदा आहिनि। सो मोहम्मद ज़मान भाई मेरे साथ मौजूद, कहते हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माई स्वीट बुआ जी, आपको भी वेलकम कहते हैं प्यारे भाई। अच्छा हिदायतुल्ला, हाँ वैसे मुझे ज्यादा याद नहीं है। और किशोर भाई हमारे साथ कहते हैं सलाम मुंजा खूबसूरत अदा।
वालेकुम अस्सलाम मुझे सोना आदा। जैन कहते हैं कि तेरे होने से हसीन है ये कहानी दिल की, तेरे होने से है आबाद फसाना दिल का। अरे वाह क्या बात है। और तारिक भाई लिखते हैं कि घोटकी में हमारे दोस्त सदानी ट्रेडर्स घोटकी, दीपक भाई, शकील, ऋतिक, मोहन, अकबर अली बुक्टी, फराज अली, ये सब हमारे दोस्त हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं घोटकी में। ओके जी, ये सारे हमारी जो टीम मेंबर्स हैं, जिनमें आप लोगों के लिए दीपक भाई मौजूद हैं, शकील हैं, ऋतिक है, मोहन है, अकबर भाई हैं, फराज हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो जितने भी घोटकी वाले लोग हमें सुन रहे हैं वो वहां से जाकर, यानी कि सदानी ट्रेडर्स से जाकर आप जो है ना डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइटेश के प्रोडक्ट जो है ना वो परचेज कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे। और इन तमाम भाइयों को वेलकम कहते हैं और साथ साथ महर इरफान सियाल साहब कहते हैं कि सलाम मैम, दीपक राज भाई माई डिस्ट्रीब्यूटर घोटकी से डेडिकेशन सॉन्ग टू दीपक भाई और उनकी ट्विंस डॉटर्स हैं वीरा एंड वीरता, क्यूट प्रिंसेस माशाल्लाह। ओके जी, दोनों परियों के लिए प्यारा सा गाना लगा देंगे, दीपक भाई को भी डेडिकेट कर देंगे आपकी तरफ से। और बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक भाई माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं और सासा जो है ना उनके लिए ढेर सारी दुआएं। और ये मेरे पास एक बड़ा प्यारा गाना मौजूद है, मैं सोच रही हूँ कि हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे, लेकिन ये वाला गाना हम महर इरफान सियाल साहब की तरफ से दीपक भाई को डेडिकेट कर देंगे और उनकी जो प्यारी सी दोनों डॉटर्स हैं ना वीरा एंड वीरता, उनको भी डेडिकेट करते हैं। माशाल्लाह खुश रहें और एंजॉय करें वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

सही कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि ये गाने ऐसे गाने हैं हम जितने भी सुन ले हमारा दिल ही नहीं भरता। बहुत प्यारा बहुत सुंदर गाना है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं जनाब वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। अच्छा, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है, तो आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए जिसमें आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो जो लोग ऐसा होता है ना कि क्रीम ही नहीं लगा पाते हैं, चलें आप ऐसा वाला सीन है कि चलें आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपके लिए डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है। अगर आप फेस वॉश ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश, ये सब लोगों के लिए है, ऑल स्किन टाइप के लिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसके ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है।

हो गए सपनों में हम, लेकिन आपने जरा डिसकंप्यूटर क्रीम लगाकर उसकी खूबसूरती में खोज जाना है। और किशोर भाई कहते हैं कि मुझे बचपन में फनी सजा तो न मिली हुई, पर यादगार सजा, खतरनाक सजा मिली, जय जो मूसा को तालक भी न हो अली ई भी थी दो हो वैसे। मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक अबू, आज लिखते हैं कि अबू कमरे में बंद करने की धमकियां देते थे और तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा, जैसे कमरे में बंद करता था तो हम ब्रो आपस में कहते हैं, अच्छा प्रैक्टिस करते थे ताकि अबू अगर मुर्गा बनाए तो फिर हमें कोई तकलीफ ना हो। क्या बात है। गदा हुसैन लिखते हैं कि जी सिद्रा आज कुछ भी हो जाए लेकिन आपने गाना मेरा लगाना है। जी बिल्कुल आज आपका गाना लगा देंगे, इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं आप, मुझे बताएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया या अभी आपके जो ये दोस्त हैं मोहम्मद बख्श मल्ला भाई उनकी दुकान पर अवेलेबल नहीं हुए हैं। और कहते हैं कि नूरदीन अबड़ो शाका अबड़ो विलेज आंदल खान मल्ला से आप हमारे साथ मौजूद हैं। ओके हो गया जी। फकीर साहिब शेख लाड़काना से हमें सुन रहे हैं वेलकम। निसार मोलाई हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप हमारे पुराने लिसनर हैं। ओके जी। सपनों से बाहर आना तो चाहते हैं लेकिन हम आ नहीं पाते हैं इसलिए क्योंकि हमारे सपनों की जो दुनिया है ना वो बहुत सुंदर है और ये जो बाहर की दुनिया है ये बड़ी खतरनाक है, तो ऐसा लगता है हमें कि भाई हमें सपनों की दुनिया में ही रहना चाहिए। और समाटो गोपां कहते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम डियर सिद्रा केसिया, कंबर सिटी से आप हमारा नाइस वॉइस, थैंक यू वेलकम। आप बताएं दीस किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज किए कंबर सिटी में तो मिल रहे हैं, तो आप कब ले रहे हैं मुझे बताइएगा। गाना सुनना चाहते हैं? ओके जी सुना देंगे। अच्छा निसार मोलाई भाई आपने इतने सारे कमेंट्स कर दिए हैं,

ठीक है जी, आप हमारे बड़े पुराने लिसनर हैं, 2013 से मेरा शो सुनते हैं। ओके लेकिन मैं तो तब आई नहीं थी एफएम पे। वेल आपको वेलकम कहते हैं। आप 20 दिन मेरी क्रीम लगाइएगा, ठीक है जी सर भाई।

हुजे मज़ा त कबा पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए पो तमा लगाई कोन बुधाईंदा हलो मुखे मीर ममताज बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं ब्यूटी शो आपका अच्छा है स्किन केयर करनी चाहिए नाइस है वोट दाद मोहम्मद बिरोही मदेजी से मीर मोहम्मद बिरोही अशफाक अली बिरोही सजाद अली बिरोही भाइयों को वेलकम कहते हैं वासा भाई कहते अदी सिडो जवाब एक दफो अबे सजा दिनी हुई बदी छड़ियो हुए पूरो कलाक अदी आई मामा ही चाचा तन गोशी कराइंदा हुआ अच्छा ये तो वैसे आम सी सजाएं है मुझे लग रहा है कोई ऐसी सजा बताएं जो आपको मिली अपने बचपन में आपको लगता है कि ये थोड़ी वक्री सजा है भाई अच्छा निसार भाई हमारे घुनी वाले लिसनर थे अब उन्होंने अपनी खामोशियों को तोड़ लिया है अच्छा किया है आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं थैंक यू बस आप एक काम कीजिएगा आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है तो वो भी आप परचेज कीजिएगा दोनों चीजें साथ में लगाएं ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते रहे दोदा हेलो भाई अच्छा गदा भाई कहते गदी सिद्रा देख लो आपका प्रोग्राम चल रहा है लेकिन अभी मोरो वालों ने आपका प्रोग्राम बंद कर दिया है अब आपका प्रोग्राम कैसे सुने मोरो वालों ये क्या है पहली शिकायत आपकी मुझे मिली मोरो वालों की तो मैं तारीफ करती हूँ मोरो वाले जो हमारा अच्छे से प्रोग्राम कनेक्ट करते हैं भाई तुम्हारी शिकायत था न मिलन गुर्जे सही प्रोग्राम कनेक्ट करो अदा मोरो वालो अच्छा रमजान भाई भी आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम रमजान भाई थोड़े शॉर्ट शॉर्ट से कमेंट्स लिखा करें इतनी लंबी चौड़ी शायरियां भेज देते शायरियां जो है ना वो 5 बजे वाले प्रोग्राम में भेज दिया करें ठीक है

अरे किशोर भाई कहते हैं कि अदा शमन जो गानो बुधराए फकीरानी तबियत जो मुखे दिल बर मिली वियो आ ओके डेडिकेट टू माय स्वीट वाइफ छा गाल कजे भाभी के डेडिकेट वास साईं वा वास भाई कहते थी नंढपण में ना वडो शरारती हुअस घर वारन सा कावड़ कंदो हुअस वडो घर जो ध्यान कंदो हुअस आईली वो कुटकी भी जाम खाइंदा हुंदा छड़े त कोने दींदा हुंदा घर वारा अच्छा दाऊद अली पिताफी भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कराची से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं वेलकम कहते हैं अच्छा दाऊद भाई लिखते हैं कि इस मतलब की दुनिया में तो मोहब्बत को मत ढूंढ खुद को बर्बाद करने की वजह मत ढूंढ यहाँ पर तो हर कोई अपने आप को वफादार बनाए बैठा है दाऊद तो जो खुद को बेवफा बनाने की वजह मत ढूंढ सब सुनने वालों को मेरा सलाम वालेकुम अस्सलाम जी समाटू तांचो गानो भी हलायूं था और ये जी अरबेलो चाचड़ भाई घोटकी से मैं सुन रहे हैं अरबेला भा तां घोटकी मां जेको आने डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सगो था घोटकी में तवां जला डी स्किन ब्यूटी क्रीम असा अवेलेबल कराए छडी आहे तो घोटकी में दीपक भाई वेठो आहे उन वटा तवां डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश वठी सगो था चाचा खालिद कहते हैं सजाएं मिलना तो अब स्टार्टेड बचपन में तो हम मासूम थे योर टॉपिक आंसर क्या बात है चाचे की हाने सजाओं मिलन थी अरे बाबा केर चाचे के सजाओं दे दो

चलो मजा कंदासीं पर तव्हां हिते वियो हिते टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा वापसी जल्दी मोटी तव्हां ईंदासीं तव्हां काॾे न वञो हिते वेठा हुजो असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा रहो बाबा ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन मिले थी त नंबर ते राबितो करे वठो ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए वठो मां हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड आहे बाबा व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां सो लॻाईंदा रहो ऐं सुहिणा थींदा रहो

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10%।

0: मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: खुशखबरी अवांजे पंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुन्यातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे सामू सलीम कॉलोनी टंडो मातली। डॉक्टर अजा मुस्तफा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियों जो इलाज, बार जो न थियण बांझपन।
0: डॉक्टर अजा मुस्तफा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी। याद रखंदा निजाम मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वने थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचण, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0-34-01-200। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
0: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 03132525786।
3: जी हा, 2315-2576।
0: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

इसके अलावा वाइट एज ब्यूटी सोप है, वाइट एज का फेस वॉश है और साथ साथ वाइट एज की डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है। जी बिल्कुल, एंटी एक्नी ट्यूब। उसके अलावा वाइट एज लवली क्रीम है। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तमाम प्रोडक्ट जो है ना अपना अपना काम करते हैं। मतलब ऐसे कि अगर आपको चाहिए कोई ऐसी नाइट क्रीम जो कि भाई आप लोगों को रिफ्रेश बना दे, आपकी स्किन को अच्छा सा लुक दे दे, आपके चेहरे पर जो है ना व्हाइटनिंग ला दे, तो आपके लिए वाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि एवोकाडो और मिल्क से तैयार की गई है। अगर आपको चाहिए कोई लाइट सा प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल करें अपनी हर स्किन टोन के ऊपर, तो आपके पास वाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी सोप इस्तेमाल करने वाली समाते हैं, साबुन लगाना आपको अच्छा लगता है, तो आपके लिए वाइट एज का ब्यूटी सोप भी मौजूद है। क्योंकि वाइट एज का ब्यूटी सोप जो है ना, ये भाई वाइट एज ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में आपको वाइट एज का ब्यूटी सोप भी परचेज करना चाहिए। वैसे ये आप लोगों के लिए एक ऐसा सोप हो सकता है जैसे आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं, सब लोग लगा सकते हैं। मोस्टली जैसे आप घर में कोई

साबुन का यूज करते हैं, तो सारे लोग ये व्हाइटिश का ब्यूटी सोप जो है ना लगा सकते हैं। ये बहुत ही मिल्की सा सोप है, इतना कमाल का देगा, इतना सॉफ्ट सा, ग्लोइंग सा। तो उसके साथ साथ आपको व्हाइट एज का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो व्हाइट एज का जो फेस वॉश है ना, उसकी अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तैयार रखा गया है। वैसे तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा क्रीमी सा लुक चाहिए और मिल्की सा लुक चाहिए, ब्यूटी क्रीम और व्हाइट एज का जो है ना वो साबुन मौजूद है, लेकिन लोगों के चेहरे पर वाइटामिन सी की कमी है, या फिर आपके चेहरे पर आपको चाहिए कि भाई, या ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को ऐसा क्रेज भी होता है कि हम वाइटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स लगाएंगे, तो आपके लिए व्हाइट एज का वाइटामिन सी फेस वॉश मौजूद है। और व्हाइट एज का जो वाइटामिन सी फेस वॉश है ना, या कि स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है, और साथ साथ ये बड़ा क्रीमी सा फेस वॉश है, तो इसका इस्तेमाल भी आप सब लोग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, कहीं जाना, यानी कि ऐसा होता है कुछ लोगों की घूमने फिरने की बड़ी आदत होती है, वो कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं, तो अगर आपको ट्रैवल करने का बड़ा शौक है, तो आप व्हाइट एज का जो फेस वॉश है ना, ये आप अपने पास रख सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अफोर्डेबल है और बहुत ज्यादा जो है इसको आप कैरी कर सकते हैं, बहुत ही कमाल के आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। बाकी अगर यहाँ पर डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब की बात आती है, तो जिन लोगों के चेहरे पर बड़े एक्नी होते हैं ना, एक्नी को खत्म करने के लिए जाहिर सी बात है आपने बड़ी सी ट्रीटमेंट करवा रखी होती है, लेकिन ट्रीटमेंट से ऐसा होता है, मुझे लगता है कि फायदा जो है ना आपको थोड़ा सा वक्ती तौर पर मिल ही जाता है, लेकिन बाद में आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लगाने पड़ जाते हैं, इतने प्रोडक्ट जो है ना बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स के जब चक्कर लगाते हैं तो आपको पता लग जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए, और कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपकी एक्नी की ट्रीटमेंट कर सके, एक्नी से फाइट कर सके, तो आपके लिए डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब है। अच्छा हाँ, ये जो है ना, आप लोगों को नाम जरा याद करना है इसका, क्योंकि जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर व्हाइट एज का ये जो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है ना, इसका नाम आपको आना चाहिए। एक तो ये है कि भाई ये व्हाइट एज का आप एक्नी ट्यूब कह सकते हैं, दूसरा ये कि आपको ये नाम होना चाहिए, क्योंकि ये आसान है मुझे लगता है नाम के, डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब। ये डॉक्टर पिम्पल नाम से अगर आप लेंगे तो आपको बिल्कुल दुकानदार दे देंगे। और ये जनाब बहुत ही कमाल का ट्यूब है, ये बिल्कुल ये ट्यूब है, अगर आप कोई अच्छा सा एक्नी ट्यूब लेना चाहते हैं, जो कि आयुर्वेदिक फार्मूला है, यानी कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब, तो आपके चेहरे पर जितने भी एक्नी है, या फिर जो बैक्टीरिया आपके फेस पर जमा हो जाते हैं जिनकी वजह से एक्नी बनते हैं, उनसे आपके चेहरे पर छुटकारा हो जाएगा, आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो खत्म हो जाएगा, एक्नी मार्क्स हैं या फिर ब्लैक पॉट्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, ये तमाम चीजें भी खत्म हो जाएंगी, आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, क्लियर हो जाती है और बेदाग हो जाती है, और आपके चेहरे पर जो है सारे एक्नी का खात्मा हो जाता है। उनका अलावा जेको असावट व्हाइट एसी लवली क्रीम भी मौजूद है, मां तां के आराम आराम से सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बुधाई ना, पर खोर सारा डी थी ना, तो तवा का थोड़ो विसरी वयो हुंदो इन लाइ मां तां के सभी प्रोडक्ट जो डिस्क्लेमर डी दी चाहती, तो केड़ा केड़ा प्रोडक्ट है उनके तवा किया किया लगाए सको था, बाकी हां डिटेल्स तवा सा बिल्कुल शेयर करना सी, अगर तवा इस्तेमाल करना व्हाइट एज का प्रोडक्ट, तो तवा के खबर हो जे जेको भी प्रोडक्ट तां लगाए था उन जो रिजल्ट छाम लंदो तवा के, वो तवा छो लगायो पर। तो अगर व्हाइट एज की लवली क्रीम जी असा गाल कयो था, तो व्हाइट एज जो को लवली फार्मूलो आहे ना, ही दाडो जबरदस्त सिंह कमाल जो फार्मूला है बाबा, ही लवली क्रीम आहे जेका तवा मतलब डी जो भी लगाए सको था, आई के फंक्शन में वनो था, पार्टी आहे, या फिर जेके कॉलेज वेंदी छोकरियों होंदियों आहे, या तवा जी का जॉब आहे, तवा स्कूल वनो था, या कोई भी तवा जो कम आहे, तवा जे पर्स में बस व्हाइट एज लवली क्रीम हुजे, यानी कि सफा मेकअप वारो फार्मूलो अची वेंदो तवा जे चेहरे ते, आई तवा के खबर पवंदी, तो एतरो जबरदस्त हिकड़ी लवली क्रीम तवा के निखार डे वई, तो तवा उनके इस्तेमाल करे पांजे खूबसूरती में इजाफो आने सको था। व्हाइट एज जेका लवली क्रीम आने बाबा रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन जो फार्मूलो आहे, जिनके अंदर ट्रीह वाइटामिन्स एड कया वया आहिनि, इन लाइ एड कया वया आहिनि, त तव्हां जी स्किन ते जेके वाइटामिन्स जी कमी हूंदी आहे न, उहा पूरी थींदी रहे। वाइटामिन्स की कमी जब पूरी होती रहेगी, तो आपके चेहरे पर निखार और खूबसूरती तो खुद ब खुद आता जाएगा। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम ये एक फेयरनेस फार्मूला है, जो लोग फेयरनेस क्रीम में लगाना पसंद करते हैं, या जिनके चेहरे पर ऐसा होता है कि आप मेकअप नहीं लगा पाते, मेकअप से ऐसा होता है ना कि भैया आपकी स्किन मजीद खराब हो जाती है, खास करके सेंसिटिव स्किन वालों, तो मेकअप अगर आपके चेहरे पर सूट नहीं करता, तो बस सिर्फ आप जो है व्हाइट एज लवली क्रीम लगा लीजिए, आप मिनटों में रेडी हो जाएंगे, चुटकियों में रेडी हो जाएंगे, और आपके चेहरे पर एक प्यारा सा निखार भी आ जाएगा, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट एज लवली क्रीम से मिलने वाला है। लवली क्रीम तो बिल्कुल आप लगाएंगे, साथ साथ आप लोगों के लिए ये भी पता होना चाहिए कि अब सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियां आ रही है, तो व्हाइट एज का जो है ना वो आपके लिए लोशन भी मौजूद है, और लोशन जो है ये भाई ट्रिपल वाइटामिन्स का फार्मूला है, और ये बड़ा आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देगा। तो जिन लोगों को लोशन चाहिए होता है, खास करके हमारे चाचे को तो चाचे को जो हमारा लोशन चाहिए, तो वो आप जो है व्हाइट एज का लोशन ले सकते।

सकते हैं जो कि ट्रिपल विटामिन सी बना हुआ है और इसके अलावा आपकी स्किन मॉइस्चराइज कर देगा और साथ साथ जो है ना हेयर रिमूवल लोशंस भी हैं जो कि व्हाइट एज के अंदर मौजूद है। 3 अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। एक लेमन का वेरिएंट है, दूसरा जो है वो जनाब रोज का वेरिएंट है और तीसरा खीरे का वेरिएंट है। ये तमाम चीजें हैं व्हाइट एज के, मतलब मुझे लगता है व्हाइट एज वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट रेडी कर लिया है ताकि अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों को परेशानी ना हो, बस आप जाएं और अपने हिसाब वाला प्रोडक्ट परचेज करें और खूबसूरती का जो है ना दरवाजा आपको मिल जाएगा। अब हमने खूबसूरत होना है, बस ये हमारे हाथ में प्रोडक्ट है और अब हम इसे लगाएंगे तो खूबसूरत हो जाएंगे। जल्दी जल्दी से व्हाइट एज के ये तमाम प्रोडक्ट्स लगाइए, आप पिक कीजिए आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती के हिसाब से है। जो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम हो, व्हाइट एज सोप हो, व्हाइट एज का फेस वॉश हो, डॉक्टर पिम्पल ट्यूब हो या फिर व्हाइट एज लवली क्रीम हो या फिर लोशन ही क्यों ना हो, ये तमाम प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती में इजाफा लाएंगे, आपको हसीन प्यारा खूबसूरत बना देंगे। ये जनाब लगाने के लिए और साथ साथ अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर मंगाने के लिए आपको जो नंबर्स बताए जाते हैं उनके ऊपर भी रापता रखा करें और कॉल या फिर मैसेज करके उनको बता दें कि आप भी परचेज करना चाहते हैं व्हाइट एज की तमाम रेंज को और डायल कीजिए 0332738 4309। बड़ी 332 है 73 84 309। बो नंबर है 03-12-50-25-907। बुड़ी 312 50-25-970।

कंपनी दारो भलो गानो हलायो होमेरा चना जी आवाज में सेहरो आहे वैसे ही सेहरो असा के हिदायत अल्लाह फरमाइश कई ला केंजी शादी तो कराए तहां जी नथी थे ना मतां थी भी सके तो थींदी जे तो तहां असन जा प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कया है चाहे वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या और ये वाइटी जो प्रोडक्ट्स हो बाबा जरी ता इस्तेमाल करना ताके खबर पानी तो वाकई खूबसूरती का थे लिखल हो अच्छा ये पैनल जी तरफ अचूं था तो तवा जा खोड़ सारा मैसेजेस जमा थी वया है सो पढ़ी बैठना सी

सिंधी मुझे भली आए छोटो का चुकंदा आयो मुझे सिंधी ते और हमारे साथ ही जयपाल भाके थे एक टॉपिक भाव जी बचपन में एक गलती हुई थी तो मेरे पप्पा जी ने हुक्का पानी बंद कर दिया था। मैंने पूछा कितने दिन मंथ के लिए, हमारे मॉम ने साथ दिया एक मंथ खर्चा बंद किया वक्त था वो भी। क्या बात है जी, मेरे को लगा खाना पीना बंद कर दिया लेकिन खर्ची बंद, सही सही खर्ची टेंशन ना है बाबा, खाना पीना बंद हो जाए तो वो जरा मुश्किल वाली बात हो जाएगी। और आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए ठीक है जयपाल भाई, और मुझे बताएं खुशी कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है। और फजली हमारे साथ कहती वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी हैप्पी आफ्टरनून। और माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सदरा मुस्कान जी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? सलाम टू ऑल स्वीट सिस्टर्स। टॉपिक डियर स्वीटी, मुझे ऐसी कोई सजा नहीं मिली थी बचपन में, मैं सबकी लाडली रही हूँ जाना। ओके आप रही हैं, बाकी तो सब नहीं रहे होंगे ना वही बता रहे हैं बस।

हा भाई मुखे न ही दरअसल असांजे किशोर भाई के भाभी मिली जंहिंजी तबियत जेका आहे उहा फकीराणी आहे असांजी भाभी वाकई ॾाढी भली आहे उहा भली इन लाइ आहे छो त हूअ वाइटिंग सां प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदी आहे न वैसे तबियत में भाभी ॾाढी भली आहे अलाह साईं ख़ुशि रखे तव्हां मुंहिंजी जोड़ी सलामत हुजे ऐं तव्हां ईअं ई असांजा प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदा रहो हुन खां अलावा जिन माण्हुनि असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर नाहे कयो बाबा छो कंजूसियूं कंदा आहियो असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो जवेरिया असांजे प्रोग्राम ते पई लाड़काणे खां जवेरिया तव्हांखे चवंदा भली करे आया और हमारी प्यारी दिल रुबा भी हमारे साथ मौजूद और मौजूद जी ये वालेकुम असलाम सिदराबाद जी में मंसूर अली अकरो शरीफ से टॉपिक आंसर में स्कूल में नहीं जाता था तो सजा मिलती थी सलाम अनोमान और जुनेद हिंगोरचा राशिद शाह को और अहमद मुगल का गाना सुना दीजिएगा शो शो आपका बड़ा वीआईपी हो रहा है ओके जी बहुत शुक्रिया भाई आपको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं

वाह साईं वाह गानो बुधो था सभी के गानो वणे पयो और निसार मोलाई भा तवा के बसो प्रोग्राम वणे पयो पर तमो के हाल अहवाल दियो तमा वाईटी सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कना कोन आई हां तमा सभी जला अलग अलग प्रोडक्ट्स मु ठाराया है यानी के ताके फेस वॉश ठणवा ता वाईटी जो फेस वॉश लगाए सगो था साबुन हणदा ता वाईटी जो साबुन लगाए सगो था वाईटी सी ब्यूटी क्रीम भी है जनाब नाइट क्रीम अगर तमा इस्तेमाल करन चाहता कोई सुठो फार्मूलो हल्को फार्मूलो जे अंदर खीर हो जे एवोकाडो हो जे एलोवेरा हो जे तो तमा जे लाए देखो ना वाईटी सी ब्यूटी क्रीम मौजूद है वरी केंके एकनी प्रॉब्लम आहे दाना नथा छडे त तवा जे लाए डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब ठारायो थी मावा वरी केंके कोई फेयरनेस क्रीम लगाणी आहे जेका तवा डीह जो लगाए मेकअप जी जरूरत तवा के न पए त तवा जे लाए वाइट एसी लवली क्रीम ठाराई थी मावा ए सब प्रोडक्ट्स ता वणो पाजे करीबी जनरल स्टोर सा वणी वठी अचो अही सब प्रोडक्ट ता के मुनासिब पैसन में मिलंदा आ मुनासिब पैसन सा गडो गड तवा जे स्किन जे लाए डाडा फायदेमंद आ छो त ही सब जेके प्रोडक्ट्स आ नेचुरल अजा से तैयार थेल आ विटामिन जो भरपूर फार्मूलो आ सो लगाईंदा रहो ता मर्द मायो सबनी चलाए आयन बाबा खूबसूरती हासिल करने सबनी जो हक का है सो बोलो बाबा साडा हक एते रख।

अच्छा अली रज़ा लगारी भा ये गानो हले पे शमन जो एंजॉय करे वेठो मुगल उमरानी भा से गड मौजूद आए थैंक यू हजार भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा वेलकम कहते तमाम को और नजर मोहम्मद भट्टी भाई हैं हेलो जी मैं ठीक हूँ तामुदा की आयो आतिफ असलम का गाना सुनना चाहते हैं मटियारी से आपने मुझे ज्वाइन किया है मैं आपको वेलकम कहती हूँ आपका गाना लगा देंगे और उनका अलावा दर्द दिल आ चुके कहते हेलो हटो हटो मुझे आने दो जरा वालेकुम असलम चंदा जानी कैसी हो मैं बहुत प्यारी आप बताएं कैसी

0: It's 2:30. सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अरे न खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जह में आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन्हें जी नमी के लॉक करे आई चामरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिन नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन्हें संगरोगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एंड जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी एंड चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
5: छातवान जोड़न जे सूर पुठन जी तकलीफ कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंदे वदे सूर खां परेशान आयो छा इलाज कराए कराए थक जी पे आयो हाने इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस एक आजमायल कोरस जेको जोड़न पुठन कुल्हन ऐ जिस्म जे हर किस्म जे सूर में आराम लाए तैयार कयो वयो आए। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंद हर आचर ते सुबुह जो 9 बजे खां शाम जो 5 बजे ताई हमजा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाए फोन करियो 0302-36-36-879 0312-01-287। खात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी जिंदगी।
6: छावां के साह जे बीमारियन सबब साह में तंगी आहे सहक तंग करे छड्यो आहे साह खणण में तकलीफ आहे खंघ नथी छडे ऐं दायमी साह जे तकलीफ हुजण जे करे अवां जे फेफड़न में तमाम घणी तकलीफ आहे त पोइ हाणे अवां परेशान न थियो छाकाण जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज अहमद जोने जो MBBS DTCD TB दम एलर्जी ऐं फेफड़न जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 बजे खां शाम 5 बजे ताईं मरीज़न जो मुआइनो कंदो। जी हा अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज अहमद जोने जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 5 बजे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली नोतकाणी चौक नया पुल बदीन रोड मातली। वधीक राबते लाए हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी मोबाइल नंबर 03-12-02-76-840।
7: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
7: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

सगन मौजूद आए। सबने जो मोहब्बत हुआ बाबा तव के चौथा भली करी आया आपकी मोहब्बत समाधि कर चाहते हैं और इन खा अलावा जो है सो अस सोना सोना मानू बुधन पाया जिनमें असा सगन शामिल आज सखरवारा मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर माजली नूरियाबाद ए लाड़कानी जो समाधू एडा डो खोड़ सारा खूबसूरत मानू अस सगन मौजूद है जी वाई टीश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर रहा है इतने अस तक भला भला गाना भी बुधाईंदा सो ही फायजाली की आवाज में गानो हल पे जो अस अब्दुल्ला भाई की डेडिकेट कर अच्छा तुम पोस्ट के लाइक और शेयर करना हलो तेस ताई मां चाहती क्या मां तां के वाइट एश ब्यूटी क्रीम के बारे में बुधाया थी अगर तुम वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पया जी बिल्कुल वाइट एश ब्यूटी क्रीम अगर तुम इस्तेमाल कयो पया तो खबर हो जाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम की जी क्वालिटी है ना वो तमाम

ये बात मुझे समझ नहीं आई, वाकई बैंक क्यों खोले, लख लुटाया सोने ता आखे शो सोने एड़ो कहीं चाहिए सोनो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लगाए हाँ पो गाल समझ में चाहिए सोने के चो बाबा व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लगाए सही है।

बिल्कुल जी, कंबर में भी असांजा प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि। कंबर में भी तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स किथां बि वञी वठी सघो था। कंबर में भी तव्हांखे आराम सां मिली वेंदा। सो अगरि तव्हां वाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करणु चाहियो था, जेका तव्हांजी हर स्किन जे लाइ आहे, यानी कि तव्हांजी स्किन अगरि सेंसिटिव आहे त उन ते बि लॻाए सघो था। हुन जो फार्मूलो जेको आहे न, उहो तमामु ज़बरदस्त आहे। नेचुरल अज़ाइन जे अंदरि एड कया विया आहिनि, जीअं हिन जे अंदरि तव्हांखे एवोकाडो मिले थो, खीरु आहे जनाब, एलोवेरा आहे, ऐं हुन खां अलावा उहे तमामु चीज़ूं जेके तव्हांजी स्किन जे लाइ बहितर आहिनि, तव्हांजी स्किन खे खूबसूरत बनाए सघनि थियूं। ऐं हिन जे अंदरि यानी कि वाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदरि SPF 60 बि मौजूद आहे। यानी कि तव्हां ॾिठो हूंदो नॉर्मली त क्रीमनि जे अंदरि SPF 25 हूंदो आहे या 20 हूंदो आहे या ज्यादा ज्यादा जेको आहे 40 हूंदो आहे, लेकिन असां हिते ॾिसूं था त वाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदरि SPF 60 आहे। अगरि तव्हां इस्तेमाल कंदा वाइट एज ब्यूटी क्रीम त तव्हांखे जनाब खूबसूरती सां गॾो गॾु तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि थींदी रहंदी, छो त तव्हांजी स्किन ते जेको आहे न इहे खोड़ सारा अहिड़ा असरात पइजी वेंदा आहिनि सिज जा, जंहिंजी वजह सां तव्हांजी स्किन हिकु त मुरझाइजी वेंदी आहे, ॿियो त तव्हांजी स्किन जी जेका रंगत आहे उहा काफ़ी डल थी वेंदी आहे। अगरि तव्हां मर्द हज़रात आहियो, ख़वातीन आहियो, तव्हां सभिनी खे खपे त वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो फार्मूलो जेको आहे ट्राए करे ॾिसो। ऐं वाइट एज ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां अकेली इस्तेमालु करणु चाहियो था त बिल्कुलु करे सघो था, पर वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो अगरि तव्हां फार्मूलो ठाहिणु चाहियो था जंहिंजे अंदरि वाइट एज लवली क्रीम विझी सघो था, वाइट एज ही जेको डॉक्टर पिंपल ट्यूब आहे इहो विझी सघो था, इहे सभु चीज़ूं एड करे तव्हां जॾहिं इहो फार्मूलो ठाहे पंहिंजे चहिरे ते लॻाईंदा न त तव्हांखे ॾाढा भला रिज़ल्ट मिलंदा। जेके तव्हां ॿाहिरां इलाही किना किना फार्मूला वठी ईंदा आहियो न दुकाननि तां, जेके अॼुकल्ह माण्हू ठाहे तव्हांखे चवंदा त बाबा वेठो हणी ॾिसंदो त भलो रिज़ल्ट मिलंदव, बाबा उन्हनि खां थोरो बचो, अलाई केॾा केॾा उन्हनि में अलाए कहिड़ा कहिड़ा प्रोडक्ट विझंदा आहिनि। सो तव्हां घर वेठे पंहिंजे लाइ सेफ फार्मूलो ठाहियो, वाइट एज ब्यूटी क्रीम हुजे, वाइट एज लवली क्रीम हुजे, ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब हुजे, इहे टई चीज़ूं मिक्स करे जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी त केतिरो ज़बरदस्त रिज़ल्ट जेको तव्हांखे मिले पियो, ऐं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाक़ई केतिरे सुठे तरीक़े सां तव्हांजे चहिरे ते असर बि कनि पिया।

ओके जी, जयपाल भाई हमारे साथ हैं। जयपाल भाई क्या कहने आपके, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बिल्कुल ऐसे ही आप व्हाइट एज की लवली क्रीम लगाते रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपका दिल करे वो लगाए, क्योंकि ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में इजाफा ला देगा। अल्लाह मालिक है बाकी। ठीक है ठीक है। और ये हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी सिद्रा, आप कैसी हो? माय नेम इज तहमीना आपी। एक राज की बात बताऊं, अच्छा कहती है कि जब आप सिंधी बोलती हैं तो मुझे लगता ही नहीं कि आप सिंधी बोल रही हैं। आप बहुत ही कमाल कमाल की आ रही हैं। और टॉपिक का जवाब है कि जब बचपन में अम्मी कुछ कहती थी तो समझ ही नहीं आती थी, तो अम्मी चांटा मारती थी। ओके, उन्हें जो पोए असर लगे तो हले तो आई तुम तमीना ब मैसेज कया नहीं सेम तुम जब मैसेज अच्छी हुआ ना असाजे पेनल से। सो थैंक यू सो मच सोनी तुम से अगर मौजूद है तुम मोहब्बत हुआ बाबा ये कदें कदें पांजे हुजन जो सबूत दई छड़ींदा कयो। और हमारे साथ है जुलरी का खालिक लाशारी शो वीआईपी आए। थैंक यू वेरी मच खालिक भा। अच्छा मैं कोशिश क्या थी लास्ट में का जयपाल भाई पोइट्री तक बुधा वम दिसा टाइम बची हो तो इतने इलाही सारा कॉमेंट जमा थी वन ली मथे भजंदा था वन ओ ये भजंदा था वन। अच्छा हमारे साथ ही गुल यासीन नाज भाई आपको वेलकम हो गया। चाचा कहते हाँ लोशन में लगाऊंगा, बिल्कुल आएगा परचेज कीजिएगा, व्हाइट एज का आपको लोशन मिल रहा है, बहुत ही कमाल का लोशन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि या तारिक भाई को बोल दें, भाई तारिक भाई को बोल दें, तारिक भाई आपको पहुंचा दे के घर बैठे। और गदा हुसैन कहते हैं कि अच्छा कहते हैं आज डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई, मुझी शादी थी रही आहे, कल आपने दुआ की काम दिखा दिया, मुझी दुआ के लिए फास्ट सर्विस। बाकी मुझी दुआ असर कंदी था ऐसो ता कल मुख्य चयो दादी मुझी शादी न पई थी, जैसे भी डेट फिक्स थे थी तो कुछ न कुछ फैमिली में थी वेंदो आहे। आई तमा जी दिसो आने शादी थी नी इंशाल्लाह खैर से तमा जी शादी थी वेंदी, ता ओतने डी में ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो। ठीक है, आई वरी तमा जदे व्हाइट एज जो ही फार्मूलो ट्राई करे दिसना ना ता के इनमा भी भलो रिजल्ट मिली वेंदो, सो ता लगाई दरो शादी तई सफाई पप्पू थी वेंदो। जी वैसे हिदायतला सही बात है, शादी वाले गाने सुनकर मजा ही आ जाता है। मोहम्मद जमान भाई जियो करे इससे। दर्दे दिल कहती है कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख और मेरा इंतजार दे। वाह साई वाह वाह साई वाह। अच्छा एसन अली भुक्टी हमें लारकाना से सुन रही है, एसन भाई आपको वेलकम हो गया। फराज डहरी सुन रहे हैं, कहते हैं मजहर और मजहर की तरफ से सलाम, सो वालेकुम असलाम दोनों भाइयों को वेलकम।

अच्छा अख्तियार अली गब्बर भाई हमें सुन रहे हैं, विलेज मोहम्मद उस्मान गब्बर, जुल्फकार अली गब्बर, अली दोस्त गब्बर, प्रोग्राम बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच प्यारा भात। हम पाने गोठन में भी वाइटेज प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सको था।

ताजा नजर मोहम्मद भट्टी भा तव के प्रोग्राम वणी पयो गाना वणन पया सो बाबा बिल्कुल ही असो सोनो प्रोग्राम आए जेके तमा बुधंदा आयो जेमे तमा के खूबसूरती जा राज भी बुधा के ते कावर कर खां बेहतर आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो ओ इहा गाल

ब्यूटी क्रीम लगाया बाबा जी सोना थी वैसे। और गदा भाई कहते हैं कि सदरा देख लो आज मैंने आपको तकरीबन 10 मैसेज किए लेकिन आपने मेरा एक भी मैसेज नहीं पढ़े हैं, सारे पढ़े लेकिन ये अलग बात है कि आपने सुने नहीं होंगे अपने मैसेज। तो प्रोग्राम जब मैं कर लूँ ना तो फेसबुक पर हमारी ये पोस्ट है ना स्पडिंग पड़ी होती है तो आप वो सुन लीजिएगा ठीक है। गदे दिल कहती है कि मैं बहुत मासूम थी तो मुझे कोई सजा नहीं मिली। यानी कि आप ऐसे कोई काम करती नहीं थी कि आपको सजा मिले ऐसा है ना। अच्छा चाचा तुम्हारा जो गानो चाहे ना वो अड़ो गानो जो 5 बजे वाले प्रोग्राम बुधना सिंह ठीक है। चोरी चोरी चुपके चुपके समझी उन्हें पाना।

हज़ार भाई दे साढ़ा हक एथे रखमावी तयो जवान थी वन्यो आई पांजे पांजे हिसे जी वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करे छो तमा केड़ो भी प्रोडक्ट वठी ना वो तमा जे खूबसूरती में चार चंड लगाए छरिंदो वैसे तमा रेगुलर कोई कम कयो था को जॉब कयो था या पढ़ो था पढ़ायो था तो तमा जला वाइटिश लवली क्रीम सफा बेस्ट रहंदी बाबा वाइटिश लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम आए जेका तमा बस ये चेहरे ते लगाए छरिंदा ता चुटकिन में रेडी थी वेंदा आई वाइटिश लवली क्रीम जेका ये तमा जे चेहरे ते जेको ना ये भी थिनो ता पघर भी इलाई लवली क्रीम अगर ता लगाइंदा आयो तो चेहरे ते पघर निकरी इंदो आहे या वरी ये निशाने निशाने ठही वेना आहे त जदी ता वाइट एसी लवली क्रीम लगाइना त एडो को भी सीन न थिनो आई तमा जी स्किन सफा स्मूथ हुंदी आई उपतो तमा जी चेहरे ते जको नकडी शाइनिंग अच्छी वेने जदी ता वाइट एसी लवली क्रीम लगाए करे बाहर निकरंदा त मानु ता का पुछंदा आए हाय चमको प्या

0: तव्हां ॿुधायो बाबा इहो कहिड़ो प्यार आहे, तव्हां वाइट एस जो प्रोडक्ट कोन पिया वठो, इहे मोहबतूं न आहिनि बाबा, मोहबतूं दोनों तरफ़ से निभाई जाती है, समझो था न। ऐं रिहान खान कोसो भाई में सुन रहे हैं वालेकुम असलाम, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया, मुमताज मुले जो गानो बिल्कुल तव्हांखे ॿुधायोसीं। और हमारे साथी रमज़ान भाई, रमज़ान भाउ तव्हांजो गानो जेको पंज बजे वारे प्रोग्राम ॿुधूं था, ठीकु आहे, ही मरियल गाना पंज बजे वारे प्रोग्राम में फरमाइश कंदा कयो। और फराज डहरी कहते हैं क्या कमाल की क्रीम है, हाँ ना वही तो बताते हो, बस अलग आला तव लगाईंदा ना है, लगाए ॾिसो सुना थी
1: वेंदा।
0: अच्छा फहीम शेख भी आ चुके हैं, फहीम भाई कहते हैं कि खुद में खामियां है और दूसरों से जलते हैं, चेहरे धो नहीं सकते आईने बदलते हैं। वाह वाह वाह वाह, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, यारे भाके चौंधा भली करी आया। अच्छा सुमाटू कहते हैं कि सदरा चाचू लाइ भी दुआ कर, चाचू जी शादी तो थी वही या नहीं तवां जे लाइ क्या। पर तव्हां वाइट एस जो प्रोडक्ट लगाए तव्हांजी भी शादी थी वेंदी। हज़ार भाई कहते हैं कि आपका शो रिकॉर्ड होता है एफबी पे सिस्टर, फिर भी आप इतना बस ये भाई आप लोगों की मोहब्बतें होती है कि आप ऐसा समझ जाते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ये आपका प्यार है। अच्छा जी पाल भाई लिखते हैं कि सोच समझ कर रखना मोहब्बत की कश्ती में कदम, सोच समझ के रखना मोहब्बत की कश्ती में कदम, जब चलते हैं तो किनारा नहीं मिलता और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। पोइट्री मैंने सुना दी, अब आपकी बारी इरशाद, इरशाद क्या जाए। हिकड़ो मिंट वेड़ो पानी सीट थे।

कुछ बातें ऐसी होती है ना जो हम वक्त गुजरते साथ ही समझते हैं, क्योंकि जैसे वक्त गुजरता है तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोगों की असलियत हमारे सामने आती जाती है, और वैसे ही हम समझते हैं कि भाई हमने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां कर ली है। तो किसी को अपने जज्बात हो, ऐसा साथ हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, इज्जत हो या फिर कदर हो, बल्कि कुछ भी देने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि आपकी दी हुई चीज उसकी नजदीक कितनी कदर रखती है, क्योंकि हर कीमती चीज हर शख्स के लिए कीमती नहीं होती, और कभी कभी हम अपनी कीमती चीजें ऐसे लोगों पर भी लुटा देते हैं जो उनकी कदर करना जानते ही नहीं। तो जब भी आप ये तमाम चीजें किसी पर निशावर करने की कोशिश करें तो ये जरूर देख लें कि वो इंसान इन चीजों के काबिल भी है या नहीं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे लोगों पर लुटा चुके हैं जो नहीं करना चाहिए था। तो कोशिश किया करें अपनी जिंदगी में अपना ख्याल रखें, और अपने ख्याल के साथ साथ अपने चेहरे का भी ख्याल रखें, और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए। बहुत सारी हमारे पास अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मौजूद है जो कि आप लगाकर न सिर्फ खूबसूरती को हासिल कर सकते हैं बल्कि आप हमेशा के लिए हसीन भी बन जाएंगे।

ओ किसी हिडे हुडे अलाई छाछा आई तमहा। अच्छा हाँ फहीम भाई गाना एंजॉय कीजिए और यहीं पर बस आप लोगों से लेते इजाजत वरी तासा मुलाकात मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में थे पर सो फहीम भाई कहते हैं आपका अचानक ट्यून क्यों चेंज हो जाता है अदा खुश रहा करी ओके तांजो हुकुम यो उदायो और बस मोकलानिया ऐसन कहते हैं मां भी बैठो हाँ पर खामोश कोई गाल न कोई गाला है न तो मुसता मूसा गाला है नहीं के बे के छड़े ने प्रोग्राम में मिलूं था पांजो ओ हिरो सारो ख्याल रखना किते का गलती थी हो तो माजरत के को मैसेज रही थी को गानड़ो शानड़ो रही थी तो बाबा माजरत कयूं था मोकलानी ना ही सिलसिला में सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: It's 3 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: शहीद हो चुकी है और दूसरे भी इसमें शहीद हो चुकी है और 47 से करीब हो चुकी है। 25 लोगों को शिफ्ट किया गया लेडी रिटर्न हॉस्पिटल। 110 मैंने आपको बताया, 3 क्लासेस थी इसमें बची थे और अभी मजीद हमें खतरा है, अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन हालात होगा अच्छे ज्यादा है तो शिफ्ट कर रहे हैं। थोड़ी आपके सामने कम गली है, रेस्क्यू में मुश्किल आ रही है तो कोशिश बढ़ रही है।
6: केपीए के शहर पिशावर में टे मार निजी स्कूल की छित किरी पई, 29 शागिर्द समेत 35 जणा दबजी फोत, 50 का वधिक जख्मी। पुलिस स्कूल के मालिक के हिरासत में वठी छड्यो। डीसी पिशावर चयो आए त मलबे हेठा दबियल समूरन शागिर्दन ए उस्तादन के बाहर कढ़ियो आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ए बियन पारा फोत थियल शागिर्दन के वालदेन सा दुख जो इजहार। जख्मियों के बेहतरीन तिबी सहूलतू देने की हिदायत। स्कूल के मलबे में समूरन बारन के कढ़ी वरतो आए। घिटियों सोड़ियों होजन सबब इमदादी कार्रवाई में दुखियाई पेश थी। केपीए के सलाहकार समर हारून बिलोर चयो आए त जिंदगी जो को भी मुतबादिल ना है। फोतन के वारसन की मदद कई वेंदी। सीसीपीओ पिशावर चयो आए त साने के जिम्मेवार खिलाफ केस दाखिल कयो वेंदो। पार्लियामेंट खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज एमरजेंसी की मंजूरी दई छी। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत हेठ पार्लियामेंट जो गडियल इजलास वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी केपीए में एमरजेंसी ए गवर्नर राज वारो हुकुम पार्लियामेंट में पेश कयो। रिथ की हिमायत में 214 ए मुखालफत में 56 वोट पिया। अपोजिशन सख्त इतजाज कयो। कानून वारे वजीर सेनेटर आजम नजीर तारड़ चयो त वफाकी हुकूमत समूरा कदम आईन ए कानून मूजिब खणी रही आहे। पार्लियामेंट जे इजलास दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ जी अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई सां मुलाकात। बिन्ही अॻवाणनि हथ मिलाइण बाद मुख़्तसर ॻाल्हि बि कई। सिंध हुकूमत जे चीन जे शहर शिंगाई में सीड़पकारी कॉन्फ्रेंस जारी। वॾो वज़ीर सिहत मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जीलना मेमण ऐं ॿिया शरीक। कॉन्फ्रेंस में चीन समेत दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा 400 सीड़पकार बि मौजूद। मुराद अली शाह चयो आहे त कॉन्फ्रेंस में चीन समेत दुनिया जे सीड़पकारनि खे सिंध में सीड़पकारीअ लाइ मनसूबा पेश कया वेंदा। सिंध हुकूमत ऐं चीनी सीड़पकारनि में 19 मुआदनि ते सयूं थियूं आहिनि। सिंध हुकूमत सीड़पकारनि खे सहूलतूं ॾींदी।

छावा के साह जे बीमारियन सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छड्यो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंग नथी छडे ऐं दायमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़न में तमाम घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़न जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में, त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840। मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां

0: नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशवार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842। अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
0: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतन ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331-252-5786।
5: जी हा, 2331-5250-786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: चावा के साह जे बीमारियन सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छड्यो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंग नथी छडे ऐं दायमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अवां जे फिफड़न में तमाम घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अवां परेशान न थियो। छाकाण जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज अहमद जूणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़न जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में। त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छावा के साह जे बीमारियुनि सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज अहमद जोणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज अहमद जोणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में, त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अरे न खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहमे आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. GFM 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: छावा के साह जे बीमारियुनि सबबि साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो. छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो. जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में. त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था. एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली. वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840.
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4.

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छावा के साह जे बीमारियुनि सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS DTCD TB दम एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में, त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-12-02-76-840।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छावा के साह जे बीमारियुनि सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो, छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज अहमद जोड़े जो MBBS DTCD TB दम एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज अहमद जोड़े जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में, त पोइ देर न करियो, जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: It's 4 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: इसके ऊपर तीन क्लासेस थी, 20 से ज्यादा बच्चे जो है इसमें शहीद हो चुके हैं और दूसरे 20 में शहीद हो चुके हैं और 47 से करीब चलती है 25 लोगों को शिफ्ट किया गया लेडी विथ हॉस्पिटल 110 में. मैंने आपको बताया तीन क्लासेस थी इसमें बच्चे थे और अभी मजीद हमें अच्छे सही आपके सामने तंग गली है रेस्क्यू में मुश्किल आ रही है तो कोशिश बढ़ती.
6: केपीएजे शहर पिशावर में टे मार निजी स्कूल की छित किरी पई 34 शागिर्द 30 जणा दबजी फोत 50 जख्मी. पुलिस स्कूल के मालिक के हिरासत में वठी छड़ियो. डीसी पिशावर चयो आए त मलबे हेठा दबियल समूरन शागिर्दन उस्तादन के बाहर कढ़ी वयो आए. वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी बियन पारा फोत थियल शागिर्दन के वालदेन सा दुख जो इजहार. जख्मियों के बेहतरीन तिबी सहूलतू डण की हिदायत. स्कूल के मलबे में समूरन बारन के कढ़ी वरतो आए. घिटी सोड़ी होजन सबब इमदादी कार्रवाई में दुखियाई पेश थी. केपीएजे सलाहकार समर हारून बिलोर चयो आए त जिंदगी जो को भी मुतबादिल न आए फोतिन जे वारसन जी मदद कई वेंदी. सीसीपीओ पिशावर चयो आए त साने जे जिम्मेवारन खिलाफ केस दाखिल कयो वेंदो.
7: 214 मेंबर्स रोज इन फेवर ऑफ द मोशन.
6: पार्लियामेंट के गडियल इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज एमरजेंसी वाले रिथ से बहस जारी. स्पीकर अयाज सादिक की सदारत हेठ पार्लियामेंट जो गडियल इजलास. वफाक वजीर तारिक फजल चौधरी केपीए में एमरजेंसी गवर्नर राज वारो हुकुम पार्लियामेंट में पेश कयो. रिथ से बहस की हिमायत में 214 मुखालफत में 56 अपोजिशन जो सख्त एहतजाज. कानून वारे वजीर सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ चयो आए त वफाकी हुकूमत समूरा कदम आइन ऐं कानून मूजिब खणी रही आहे. पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर चयो आहे त पार्लियामेंटेनर केपीए में एमरजेंसी वारी रिथ मंज़ूर करण बदिरां रद्द कनि. श्री रहमान चयो त सूबो वफ़ाक सां टकराव वारी पॉलिसीअ ते नथो ठाहे सघिजे. पार्लियामेंट के इजलास दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात. बिन्हीं अगवाणन हथ मिलाने बाद मुख्तसर गाल बोल भी कई. वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी की पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात. केपीए की सूरताल समेत मुल्की सियासी सूरताल से गाल. सिंध हुकूमत की चीन के शहर शिंगाई में सीड़पकारी कॉन्फ्रेंस जारी. वडो वजीर सैयद मुराद शाह सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण बिया शरीक. कॉन्फ्रेंस में चीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क 400 सीड़पकार भी मौजूद. मुराद अली शाह चयो आए त कॉन्फ्रेंस में चीन समेत दुनिया के सीड़पकारन के सिंध में सीड़पकारी लाए मनसूबा पेश कया वेंदा. सिंध हुकूमत ए चीनी सीड़पकारन विच में 16 मुआहदन ते सयूं थियूं आहिनि. सिंध हुकूमत सीड़पकारनि खे सहूलतूं ॾींदी. रूसी घरू वज़ीर पाकिस्तान जो चइनि ॾींहनि वारो करण बद रवानो. घरू वज़ीर मोहसिन नकवी हमन सब खे एयरपोर्ट ते अलविदा कयो. मोहसिन नकवी चयो त रूसी घरू वज़ीर जो दौरो पाक फ़ौज पाक रूस लाॻापनि खे अॻभराई थींदी.

0: छावा के साह जे बीमारियुनि सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में। त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840। मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03-1308-6-3163।
1: ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल। ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल।

0: जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलन जी मोबाइल नंबर 210-31-43-842। अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-32।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331-252-5786।
3: जी हा, 2315-2575-786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: छावा के साह जे बीमारियन सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छड्यो आहे, साह खणण में तकलीफ आहे, खंग नथी छडे ऐं दायमी साह जे तकलीफ हुजण जे करे अवां जे फेफड़न में तमाम घणी तकलीफ आहे, त पोइ हाणे अवां परेशान न थियो। छाकाण जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज अहमद जूणे जो MBBS DTCD TB दम एलर्जी ऐं फिफड़न जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में। त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: छावां के साह जे बीमारियुनि सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में, त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खुश्क ऐं बीरोनो की स्किन हाँ इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: छावां के साह जे बीमारियुनि सबब साह में तंगी आहे सहक तंग करे छॾियो आहे साह खणण में तकलीफ़ आहे खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज अहमद जोड़े जो MBBS DTCD TB दम एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो जी हा अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज अहमद जोड़े जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था एड्रेस MK अस्पताल मातली नोतकाणी चौक नया पुल बदीन रोड मातली वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी मोबाइल नंबर 03-1202-76840 मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03-1308-63163
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 31 43 842.
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
5: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
7: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
9: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: छावा के साह जे बीमारियुनि सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में, त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-12-02-76-840।
1: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻे।

0: या बदहज़मी जड़ा मसला आहिन त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सिहतमंद मैदो, सिहतमंद ज़िंदगी।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज जी एफ एम 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो 90.4।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: छावा के साह जे बीमारियन सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छड्यो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छडे ऐं दायमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अवां जे फिफड़न में तमाम घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अवां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज अहमद जूणे जो MBBS DTCD टीबी दम एलर्जी ऐं फिफड़न जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वगे खां शाम 5 वगे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में। त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वगे खां 5 वगे ताईं डॉक्टर साहब सां मशको था। एड्रेस MK अस्पताल मातली नोतकाणी चौक नया पुल बदीन रोड मातली। वधीक राब्ते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी मोबाइल नंबर 03-12-02-76-840। मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर

0: डॉक्टर मुस्तफा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरानी हाने रोजानू मरीजन जो इलाज कंदी। याद रखंदा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐ फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पो हाने खणो फोन ऐं पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331-252-5786।
2: जी हाँ 2315-25-786
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छावा के साह जे बीमारियन सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छड्यो आहे, साह खणण में तकलीफ आहे, खंघ नथी छडे ऐं दायमी साह जे तकलीफ हुजण जे करे अवां जे फिफड़न में तमाम घणी तकलीफ आहे, त पोइ हाणे अवां परेशान न थियो। छाकाण जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़न जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में, त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी, बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: छावां खे साह जे बीमारियुनि सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में। त पोए देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल, मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-12-02-76-840।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 0310-3143-842।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: छावा के साह जे बीमारियुनि सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो, छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज अहमद जूणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में, त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: छावा के साह जे बीमारियन सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छड्यो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंग नथी छडे ऐं दायमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अवां जे फिफड़न में तमाम घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अवां परेशान छाकाण जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS DTCD TB दम एलर्जी ऐं फिफड़न जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में, त पोए देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

छावा के साह जे बीमारियुनि सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह ख़ालीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में। त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था।

0: एड्रेस एमके अस्पताल मातली नोतकानी चौक नया पुल बदीन रोड मातली वधीक राबते लाए हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी मोबाइल नंबर 03-12-02-76-840।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
1: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
0: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
1: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
2: सुपर वाइट।

0: छावां खे साह जे बीमारियुनि सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में, त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल, मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840। मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03-1308-6-3163।
1: खुशखबरी, असांजे पंहिंजे शहर मातली में अव्हांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1310-41-43-842। अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
0: अम्मा आयशा अस्पताल, एक चमक

0: अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-94-295-244।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331-252-5786।
3: जी हा, 2315-2575-786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: चावा के साह जे बीमारियन सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग कर छड्यो आहे, साह खणण में तकलीफ आहे, खंघ नथी छडे, दाइमी साह जे तकलीफ हो

0: अरे न खुश बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज डल स्किन के पर ओके खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जैमे आहिन चावरन जो खूबियों कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उनकी नमी के लॉक करे चावर जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइन्स झुरन के घट कर रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ब्राइट उन गुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: छावा के साह जे बीमारियन सबब साह में तंगी आहे सहक तंग करे छड्यो आहे साह खणण में तकलीफ आहे खंग नथी छडे ऐं साह जे तकलीफ होजण जे करे अवां जे फेफड़न में तमाम घणी तकलीफ आहे त पोइ हाणे अवां परेशान न थियो छाकाण जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज अहमद जोड़े जो MBBS DTCD TB दम एलर्जी आई फिफड़न जे बीमारियन जो माहिर हर जुमे जे दिही शाम 3 वगे खां शाम 5 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदो जी हां अवां जो जातल सुन्यातल डॉक्टर नियाज अहमद जोड़े जो हाणे अवां जे शहर मातली में तपोए देर न करियो आई हर जुमे ते शाम जो 3 वगे खां 5 वगे ताई डॉक्टर साहब सा मशवरो करे सको था एड्रेस MK अस्पताल मातली नोतकाणी चौक नया पुल बदीन रोड मातली वधीक राबते लाए हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी मोबाइल नंबर 03-1202-76840 मातली आसपास की अवाम लाइ खुशखबरी मातली शहर जी पेलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फीन लवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03-1308-63163
3: खुशखबरी शहर मातली में अवां जो जातल सुन्यातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन के सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज बार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी

0: रोजानू मरीजन जो इलाज कंदी। याद रखंदा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो नथियन औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली 237-41-230।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: चावा के साह जे बीमारियुनि सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS DTCD TB दम एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में, त पोए देर न करियो, जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राब्ते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840।
1: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छावा के साह जे बीमारियुनि

0: तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो, छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में, त पोए देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: आज 20 में शहीद हो चुकी है और 47 से करीब जख्मी है, 25 जो हमको शिफ्ट किया गया लेडी रेडी हॉस्पिटल, 110 मैंने आपको बताया, 3 क्लासेस थी उसमें बची थे और अभी नजीर हमें खतरा है, अल्लाह ताला मौत करे लेकिन हालातों का अच्छे ज्यादा है, कोशिश कर रहे हैं थोड़ी आपके सामने कम गली है, रेस्क्यू में मुश्किल आ रही है तो कोशिश बढ़ती।
6: केपीजे शहर पिशावर में निजी स्कूल की छत किरी पई, 34 शागिर्दन समेत 25 जणा दबजी फोत, 20 जख्मी। पुलिस स्कूल के मालिक ए प्रिंसिपल के हिरासत में वठी छो। केपी हुकूमत साने की जांच लाए कमेटी जोड़ी छी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ भी वाक़े की रिपोर्ट तलब करे वरती। जख्मियों के बेहतरीन तिबी सहूलतू डण की हिदायत। सीसीपीओ पिशावर वाक़ो संगीन लापरवाही जो नतीजो है। सोड़ियन गिटियन में गैर मयारी स्कूल कायम किया वो।

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
1: छावां खे साह जे बीमारियुनि सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में। त पोए देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल, मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-12-02-76-840। मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर, राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842। अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरत हालतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।

0: अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331-252-5786।
3: जी हा, 2-331-552-7086।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज़, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4 पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हेलो अस्सलाम वालेकुम सुवारी सिंध जे मलूक मिट्टी ते रहंदड़ तमाम मौजिज बुधंदड़न के लाखिणे लतीफ जी बोली मेहरान जी छोली आई मिठड़ी अमड़ जे लोली जेड़ा सोहणा सलाम आई जीए एफएम 88 रेडियो नेटवर्क जा कुर्ब कबूल मौजे सामईन अवां जा कहड़ा हाल आहिन अवां खुशबाश आहियो अवां ठीक ठाक आहियो अवां चाक चंगा बलाई मतारा जोड़ आहियो असां जी दुआ है त सदाई तारन में चंडू हुजो खीर में खंडू हुजो मेवन में अंबू हुजो ऐं कॾहिं पवां जी मुर्क मेरी न थिए सदाई अवां जे लुड़कन जो डुकार ऐं मुर्कन जो सुकार हुजे शाल अवां खे को सोवा न लॻे शाल अवां ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो जुग जुग जीओ मुर्कंदा महकंदा ऐं गुलन जीअं टिड़ंदा रहो मौज़े सामईन ही आहे जीए एफएम 88 रेडियो नेटवर्क हाज़िर आहे अवां जो पंहिंजो शो रस रिहाण रस रिहाण शो में अवां जो आरजे अवां जो मेज़बान अवां जो पंहिंजो जी हा उहो ई साॻियो आऊं आहियां यूनुस बकारी ऐं अवां खे ॿुधाईंदा हलूं त अॼु खां हिकु नई आरजे असांखे ज्वाइन कंदी जेका हिन शो में असां सां शामिल हूंदी उहा आहे
1: आरफानाज़ अस्सलाम वालेकुम मौज़ूद सामिन कहिड़ा हाल आहिनि ठीकु आहियो ख़ुशबाश
0: वालेकुम अस्सलाम थैंक यू आरफानाज़ वेलकम

0: वेलकम बलिकार अॼु पहिरियों दफ़ो रेडियो जे थ्रू तव्हांजो आवाज़ ॿुधंदड़नि ताईं पहुचे पियो। तव्हांजे कहिड़ा हाल आहिनि? ठीकु आहियो
1: जी? बिल्कुलु ठीकु आहियो।
0: ख़ुशि आहियो, चङा भला आहियो। मौसम कीअं?
1: मौसम गर्मी आहे अॼुकल्ह ॾाढी बदीन में।
0: अच्छा, बदीन ज़िले जी ॻाल्हि पिया कयो। मातली मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जिन जिन इलाइक़नि में थरनि में बरनि में वाइणनि में वस्तनि में जिते जिते तव्हां ॿुधो पिया उते गर्मी आहे, छो त सारियुनि जे पचण जी मौसम बि आहे ऐं ही जेका मौसम हूंदी आहे गर्मी मां सर्दीअ ॾांहुं कन्वर्ट थींदी आहे न इन जे करे।
1: अच्छा
0: अर्फा, अर्फा तव्हां ॿुधायो भला हींअर जॾहिं तव्हां असां सां मुखातिबु आहियो, ॿुधंदड़नि सां मुखातिबु आहियो, त तव्हांजी दिलि छा थी चवे त को गानो ॿुधाइजे?
1: जी, को गानो सुठो ट्रैक लॻाइजे।
0: ट्रैक लॻाइजे, टहक लॻाइजे,
1: ट्रैक लॻाइजे।
0: न, ट्रैक लॻाइजे। ओके, त उहो सुठो सॉन्ग मुंहिंजे ख़्याल में त असां सॉन्ग जी शुरूआत जेका सॉन्ग जी आबदा परवीन जी आवाज़ सां कयूं था। हिकिड़ो ट्रैक आहे जेको शामिल कंदासीं मैडम साइण आबदा परवीन जी आवाज़ सां, ऐं त पोइ अचो गॾिजी ॿुधूं। मौज़िज़ ख़ातिन हज़रात, तेसि ताईं लिखो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो, ऐं 888-188-81 ते असांखे मैसेज मोकिलियो छो त आरफा नास ऐं यूनिस बकारी जो साथ हवां त ठीकु इनशाला 9 वॻे ताईं हूंदो। हा न
1: जी,
0: त पई गॾिजी ॿुधी था वठूं आबदा परवीन खे। कंहिंखे ॿुधी वठूं?
1: आबदा परवीन खे।
0: ओके, त पोइ अचो त गॾिजी ॿुधूं मौज़िज़ ख़ातिन हज़रात आबदा परवीन।

जी जनाब मां लिखी सघंदा मैसेज ऐं मैसेज करण जे लाइ लिखो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो 888-881 असांजो नंबर आहे 88-81 ते मैसेज मोकिलियो असां वञे मैसेज ज़रूरु

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जी जनाब वेलकम भलीकार खुश आमदीद अवी खिदमत में आया पेंजो यूनिस बकारी जडे त मूसा गडार जी अज आहे
1: अरफानाज
0: जी अरफा अज अस कुछ मैसेजेस शामिल कदासी तामिल दिसो केर है असा गड
1: विलेज सतूरो मकवाणू खां जाड़ावाटर से सतूरो मकवाणू चंदर मकवाणू गेनू मकवाणू केवल मकवाणू
0: जी जी
1: लालचंद मकवाणू
0: जी
1: वेलो ड्राइवर सूफियाबाद वारो
0: ठीक है
1: वास्तो मकवाणू
0: वास्तो मकवाणू थैंक यू वेरी मच तमाम घड़ी मेहरबानी जाड़ा वाटर जो है टंडो गुलामली रोड से मातली टंडो गुलामली रोड से उतर का सतूरो मकवाणू चंदर मकवाणू बिया समूर जी मकवाणा साहिबान बुधन था तवाज तमाम घड़ी मेहरबानी थैंक यू चई छो अरफा
1: थैंक यू अदा तवाजे बुधन लाय
0: जी हाँ दोस्तों मेहरबानो कदरदानो भेनरो ए भाइरो अमने खोड़ सारा मैसेज जके न वे अजाम शामिल कंदासी जी जी अमा मैसेज असा के मोकली जा विंदो असा शामिल कना विंदासी त पे कुछ वधिक मैसेज इन आई उए शामिल कयूं मुझे ख्याल में कुछ मैसेज मां शामिल करे वठा आई दिसूं ता त जसा गद केर है छो त अरफानाज असा के जॉइन कयो है त यकीनन असी शामिल करने जी कोशिश कंदासी जके मैसेज इन अस्सलाम वालेकुम आई शेर गुलाब लगारी गोठ है जी जनाब गोठ है बशाम लगारी बशाम खान रिंद उन गोठ का असें बुधे तो शायर गाजी खान रिंद शायर भी है तमाम घड़ी मेहरबानी मिठा मानो खुश हो आबाद हो अवसा शामिल है केर शामिल है अरफा पढ़ो जी तुझ शामिल करे वो मैसेज थैंक यू अरफा अवं बुधा जल्दी जल्दी
1: अली रिंद फैजान अली रिंद शाह आजाद अली रिंद
0: शहजाद अली रिंद ठीक है थैंक यू वेरी मच जी नंढड़ी अंबर गुल शायद है ना छा लिखल नलो ओके

0: ही नडड़ी है कोनेन जहरा। अच्छा थैंक यू वेरी मच भलीकार चौंदासी कोनेन जहरा नडड़ी बेबी ताना गजी बुदे पई वेलकम चौंदासी तवा के एकडो बियो मैसेज को पतो ओ असन के लिखी मोकलियो आ है शहर राज। अच्छा जी शायद राजो सिटी लिखे लाए छा लिखे लाए ताम पड़ो बला जी
1: शहर राजो खानाणी खा केवल
0: जी केवल थैंक यू वेरी मच राजो शहर जो है राजो खानाणी उतना ज्वाइन किया है वेलकम चंदासी। हाँ मौजूद खातिन हजरात जो तुम शामिल थे चाहो था तो मैसेज मोकले सकता लिखो एम टी आई स्पेस दिए गोठ शहर जो नालो लिखो पैंजो नालो लिखो 8881881 मैसेज डेयरे मोकलो एक मैसेज असतो है जो मोकलो है जी जनाब गोठ है गोठ आली जूणे जो नजद तलहार खा अब्दुल्ला नास जूणे जो बो ही कैंजो नालो लिखल
1: अली मोहम्मद जूणे जो
0: जी उन तोतो जूणे जो तोते सा गद
1: परदेसी जूणे जो
0: परदेस जो ये ना
1: जी
0: परदेसी जुमू जूणे जो थैंक यू वेरी मच भलीकार चवंदासी तवा के तवा सा के गोठ आली जूणे जो खा बुधो पिया तमाम घणी मेहरबानी वडा वड गोठ हाजी सुल्तान लुंड खा प्यार अली लुंड साहब मैसेज किया थैंक यू चई वो उनके
1: थैंक यू अदा मेहरबानी
0: थैंक यू अदा प्यार अली भलीकार चंदासी गोठ गुलाम सेन जलालाणी खां नाज फकीर मोहम्मद जलालाणी महबूब नाज जलालाणी मुख्तियार नाज जलालाणी आरजू असलम जलालाणी मैसेज पहुतो है तां लिखियो है असलम अलैकुम वालेकुम असलम जिले सांगढ़ के झोल शहर का बुधो पिया तमाम घणी मेहरबानी गोठ हाजी आचार लुंड खां असें बुधे तो जुल्फकार लुंड शामिल है नंढड़ो जुबेर लुंड नंढड़ो जावेद तमाम घणी मेहरबानी वेलकम चौंदासी तांके सजन सांगी की वांड में गुलाब गुल मिठी थरपारकर का बुधे तो थैंक यू गुलाब गुल वेलकम वेलकम वेलकम भलीकार चौंदासी तांके इस्लाम कोट का नाज निसार अबड़ो निसार अहमद अबड़ो से गडा है केर
1: आफ्ताब अबड़ो
0: आफ्ताब अली अबड़ो
1: दशरथ साफ आए अदी आरफा नाज के भलीकार
0: भलीकार वाह जबरदस्त अरफा तांजी भलीकार थी वही इस्लाम कोट का यो मैसेज पहुतो शहर सीराणी का पोड़ो मल्हा असगर अली मल्हा मुकद्दर अली मल्हा चवन था लाजवाब कंपेयरिंग जबरदस्त अंदाज है अल्लाह सी तांके सलामत रखे जवाब दियो
1: थैंक यू अदा मेहरबानी अवां जो मोहब्बत होने वाला
0: मेहरबानी अदा थैंक यू भलीकार झलूरी का मैसेज पहुतो है कैंजो मैसेज आए
1: खालिक लाशारी शो वी आई पी आए
0: खालिक लाशारी चवे थो तो शो वी आई पी थैंक यू खालिक लाशारी ओके जी आरफा लाशारी यूनुस बकारी जो साथ हों ही ट्रैक बुधंदे बुधंदे कमर्शियल ब्रेक न हलंदी मिलंदी छोटे छोटे नंढड़े ब्रेक का ना कोई तेस ताईं असां गॾु रहिजो।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: छावा के साह जे बीमारियन सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छड़ियो आहे, साह खणण में तकलीफ आहे, खंघ नथी छड़े, ऐं दायमी साह जे तकलीफ हुजण जे करे अवां जे फेफड़न में तमाम घणी तकलीफ आहे, त पोइ हाणे अवां परेशान न थियो, छाकाण जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज अहमद जोने जो MBBS DTCD TB दम एलर्जी ऐं फिफड़न जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़न जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज अहमद जोने जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में, त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840। मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03-1308-63163।
2: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1010-31-43-842।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरत عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
5: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBB डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोर, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उगरायूं, भुख न लॻण या बदहज़मी जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-3636-8879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
0: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: Arfanaz.
1: Thank you, Arfanaz. Yakinan Arfa jo first show aaye na kare Arfa thodo thodo ghabrail lage bhai ai yo mehsoos karaye bhai te un jekre galti kare thi ta bilkul maaf kare chajjo ai disanda si ta haane asan sa gad show mein shamil thindad jeke meharban and care care message kan tha ta po likh jo MTI space rahi pane gothe share naalo liko pane naalo liko Arfa kuch messages and shamil kare vato ji
0: gosh devani fakir lag rajo khanani kha फकीर इब्राहिम लंजवाणी फकीर हसनैन भूरो खान लंजवाणी मामा अलन फकीर लंजवाणी
1: तमाम घणी महिरबानी लंजवाणी दोस्तो खुश हुजो आबाद हुजो अवां खे भलीकार था चऊं जी आरिफा बियो केन मैसेज है
0: गोठ मीरण आराई खां
1: जी जी मीरण आराई खां केर है
0: मोहम्मद अवेस आराई ऐं मूसा खान आराई
1: जी जी जी थैंक यू वेरी मच जेके जेके बुधन पिया त मैं वेलकम चवंदासीं तव्हां सभिनी खे
0: नंढो नूर नबी
1: नंढो नूर नबी थैंक यू
0: लिखियो आहे प्रोग्राम वेरी गुड
1: अच्छा ठीक है थैंक यू प्रोग्राम सुठो लॻे थो महिरबानी जी अर्फा ॿियो कंहिंजो मैसेज आहे
0: पुछ हाजी मियार खान लगारी खां मोला बख्श लगारी
1: जी
0: नंढड़ो गुलाम हुसैन लगारी
1: जी जी
0: अजहर अली लगारी मुझा प्यारा भाणे जा मोहसिन एहसन लगारी
1: अच्छा
0: सफदर अली लगारी
1: थैंक यू तव्हां ऐं तव्हां जे भाणे जन खे भलीकार चवंदासीं वेलकम जी
0: जामोट फार्म रीचल
1: रीचल खां
0: रीचल खां मुश्ताक अली लाशारी
1: जी जी
0: बाबू लाशारी थर नगर पार्कर खां रजब अली समूह
1: जी जी
0: ए जाम
1: ऐं खान समूह ॿियो केर आहे ओके शायद थैंक यू वेरी मच गॾु हिकिड़े मैसेज में वधीक नाला लिखिया आहिनि तव्हां सभिनी खे वेलकम चवंदा तव्हां सभई कचहरीअ में गॾिजी ॿुधो पिया तव्हां जूं तमामु घणियूं मोहबतूं आहिनि भलीकार चवंदासीं समूह ब्रादर्स तव्हां महिमान थी असांजे रीचल फार्म ते दोस्तनि वटि आया आहियो अव्हां खे बि वेलकम ऐं भलीकार चऊं था गॾो गॾु कुझु वधीक मैसेज अची चुका आहिनि उहे बि शामिल कंदा हलंदासीं ॾिसूं था त असां सां गॾु केरु जुड़ी चुको आहे ओके जनाब त पोइ मैसेज पहुतो आहे ॻोठ मुश्ताक लुंड खां असांखे अब्दुल गफ़ार लुंड साहिबु ॿुधे थो माशूक लुंड ऐं मुस्लिम ऐं शाहनवाज़ ख़ासकेली ओके जी थैंक यू ख़ालिद नोतकाणी साहिबु असांखे ॿुधे पियो मातली शहर खां वेलकम ख़ालिद ऐं अब्दुल्ला टालपुर जे ॻोठ खां असांखे ॿुधे पियो वहाब टालपुर वहाब ऐं अब्दुल कुद्दूस अवां जी महिरबानी ऐं मुरीद टालपुर थैंक यू जी थैंक यू वेलकम तव्हांजो फर्स्ट मैसेज आहे असां अवां जे पहिरें मैसेज ते अवां खे भली कार था चऊं मोहबतूं ऐं वॾा वड़ तव्हां ख़ुशि हुजो आबाद हुजो ऐं जनाब ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु जुड़ी चुको आहे ओके जनाब असांखे ॿुधनि था ॻोठ अलह ॾिनो ख़ासकेली खां असांखे घड़ो बंगलो खां असांखे जॉइन कयो आहे मुमताज़ अली ऐं मौज़िम अली तमामु घणी महिरबानी भाइरो भलीकार चवंदासीं मोहम्मद अली शाहिद भाई अच्छा ओके वेलकम चवंदासीं तव्हांखे ऐं हिकिड़ो ही वधीक मैसेज तव्हां शामिल करे वठो जी छा लिखियल आहे ओके
0: लिखियल आहे अस्सलाम वालेकुम
1: हा नओं मैसेज पढ़ो
0: शेर गुलाब लगारी खां
1: जी जी शायर जेको आहे
0: बशाम खान
1: रिंदे ॻोठ तव्हां शायर

जी जन फेसबुक ते लौंग लुंड साहब असा ज्वाइन किया लौंग भा तुम तमाम घणी मेहरबानी लख थोरा वहाँ तक ज्वाइन किया मोहब्बतू तुम आर जी जमशेद जमाली साहब असा बुधन पाया मिठा मानू भलीकार तहके चवंदी थैंक यू जय प्रकाश असा फेसबुक से ज्वाइन किया जय प्रकाश अवा जो तमाम घणी मेहरबानी अवा के चवंदी वेलकम थैंक यू जो अवा असा बुध पाया रब डू खास के लिए अवा जो मेहरबानी रबड़ी कोलाची साहब अवाम असा बुध पे फेसबुक से थैंक यू सभी दोस्त पैं कमेंट कह अचो लिखा अचो कह शामिल।

0: जी जनाब वेलकम बलिकार खुश आमदीद अमाजा पेंजा आर जे मदर मुखातिब आइन यूनुस बकारी आइन
1: अरफा नाज
0: जी अरफा वेलकम चंदासी सबनी बुधंदड़ भेनरन भाईरन की कुछ मैसेज जे शामिल करे वठो ता मैसेज पढना चो शामिल कयो आई हां पेरी तरीको बुधायो तो लिखो MTI स्पेस दियो पेंजे गोठ शहर यो नालो लिखी पेंजे नालो लिखो 881 यानी 88 का सिरे मैसेज मोकले जी
1: सुमर खान लाशारी खां गुलाम मुर्तजा लाशारी
0: थैंक यू गुलाम मुर्तजा लाशारी वेलकम चंदासी तांगे भली कार जी बियो केंजे मैसेज आए रिचल फार्म का लिखल है पर लिखल है जो गोठ है वो उते नाला ता लिखा मथे लिखो अस्सलाम वालेकुम याली मदद हेठ लिखो है शो सुठो है पर आखिर में ताल नालो लिखो मस्त लिखल है MUSH सो पेंजे नाला पेरी लिखो बाकी गाली पे लिखो ताकि असि वहां सा मुखातिब थी सकूं थैंक यू वेरी मच भली कार जी आरिफा

0: फकीर देवाणी
1: देवाणी फकीर राजकानाणी का
0: इब्राहिम लंजवाणी
1: जी जी
0: फकीर हसनैन लंजवाणी
1: जी जी
0: गोठ
1: हाँ
0: गुड़ो बगो हाँ
1: घड़ो बंगलो का
0: मुमताज अली रियाज अली हास्केली
1: जी जी

ओके जनाब बिल्कुल तवा सही था चोदा अगते मैसेज जके न वो इन जे करे जो काफी मैसेज नवा नवा अचन था तबे मैसेज वरी अगते पे थन था सो इन जे करे ता बिल्कुल टेंशन न करो मैसेज सब शामिल थी विंदा थोरा थोरा करे सब शामिल कंदा सी ए मैसेज पतो गोठ जी जनाब गोठ है गेणु खान लगारी उतां का असा के मैसेज मोकलियो है महरम लगारी मेरम लगारी सब वड़ा वड़ा वहां गेणु खान लगारी जो गोठ में तक याद किया नंढड़ो फतेह मोहम्मद लगारी अवा सा गजी बुधे पियो अवा सा शामिल है नंढड़ो जी हा जनाब नंढड़ो है मोहम्मद यहिया लगारी किरोड़े कुर्ब तहजा खुश हो आबाद हो बचायो पठान का शकील पठान बुधे पियो अवा जो मेहरबानी गोठ आए मुरीद सरालपुर ओके बचायो पठान बुधे पियो मुरीद सरालपुर का अवा जो तमाम घणी मोहब्बतों हैं अवा के चवंदी वेलकम भलीकार जनाब मैसेज जो तैदाद तमाम घणो है इन के करे आराम आराम से पढ़ा भलंदी शामिल भी कंदा हलंदी देवाणी फकीर राजे खानाणी एक दफो वरी भी फकीर इब्राहिम लंजवाणी मैसेज मोकलो है प्यारो दोस्त दर्जी केवल कोहली गजी बुधे पियो बिन्हीं दोस्तन के भलीकार चवंदी बचायो पठान शकील पठान साहब एक दफो बेहर अवा भी याद किया नवीद पठान सा गड गोठा है मुरीद सरालपुर किरोड़े कुर्ब सुणा साई सदाई सुख्या हुजो शाल आबाद हुजो जुग जुग जियो डिसंदासी ती बियो असा के कें याद किया उन जे लए असा वेंदासी मैसेज ने पासे ओके जनाब मैसेज ता अना बचन पिया पर एकड़ो ट्राई कहे शायद थरपार करे गोट गुंगियो का अब्दुल जवार नोहड़ियो मुमताज लाशारी बुधन चाहे तो कोशिश कंदी सोना साई तुम तमाम घड़ी मेहरबानी दरगाह गरोड़ शरीफ का मोमिन शर सोबदार शर साकिब शर अजीब बल्कि नुजीब शर बुधे

0: ॻोठ सतूरो मकवाणू जाड़ा वाटर खां असांखे ज्वाइन कयो। हिकु दफ़ो वरी बि मैसेज मोकिलियो आहे सतूरे मकवाणे, चंदर मकवाणे ऐं गेनू मकवाणू ऐं केवल ऐं मकवाणू ऐं लालचंद मकवाणू वेलो ड्राइवर सूफ़ी आबाद वारो, अव्हां जी बि तमामु घणी महिरबानियूं ऐं अव्हां सां वास्तो मकवाणू ॿुधे पियो। सभई सुठा माण्हू मिठा माण्हू साईं ॿुधनि पिया, कहिड़ो ॾींहुं कुर्ब तव्हां सभिनी जा ख़ुशि हुजो ऐं आबाद हुजो। लख थोरा हाजी ग़ुलाम ख़ासि केली लख झंडे मरी खां कुर्बान अली ख़ासि केली ॿुधे पियो। थैंक यू जी। आरफ़ा ब्रेक वठी वठो
1: जी। बिल्कुलु।
0: कहिड़ो ट्रैक ॿुधण चाहियो पिया? जामिन अली जो
1: जी।
0: जामिन अली जो ट्रैक ॿुधंदासीं ऐं उन सां गॾोगॾु कोशिश कंदासीं जामिन अली जो ट्रैक ॿुधायूं, माना मैसेजिस ऐं कमेंट्स बि शामिल कयूं। त पोइ दोस्तो असां सां गॾु रहो ऐं अचो त गॾिजी ॿुधूं जामिन अली जो आवाज़।

0: ओके जनाब, उन खां अॻे जो न्यूज़ ब्रेक लाइ वधूं। कुझु मैसेजिस आहिनि जेके शामिल कराइणा आहिनि, त तव्हांजो महिरबानी मोहबतूं सभिनी जूं भलीकार चवंदे शामिल कंदा हलंदासीं कुझु मैसेज। ऐं हिकिड़ो मैसेज जेको आहे उहो असांखे पहुतो आहे लियाकत अली खासकली साहब, दरगाह अब्दुल्ला शाह लग टंडो गुलाम अली खां, तमामु घणी महिरबानी। देह कारी मोहम्मद अली, ऐं हिकिड़ो मैसेज पहुतो सुजावल खां लिखियलु, अस्सलाम वालेकुम आर जे, माए नेम इज़ सागर अली खासकेली। वालेकुम सलाम चओ आरजे साहिब।
1: वालेकुम सलाम।
0: एंड दोस्त मोहम्मद मूसा डायरी, दोस्त अली गाबार, शहजादो गुल मोहम्मद, तव्हां सां कॾहिं ॿुधे पियो, तमामु घणी महिरबानी। थैंक यू जी, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। तफ़सीली मैसेज लिखण लाइ तव्हां जो के शो में असांखे लिखियो आहे, घणो कुझु लिखियो आहे, पर वक़्तु तमामु घटि आहे। मूंखे कमर्शियल ब्रेक न बल्कि न्यूज़ ब्रेक ॾांहुं ॿुधणो हूंदो, ऐं कमर्शियल ब्रेक हूंदो, हुन खां पोइ वापसि असांखे अचणो आहे। उन जे करे कुझु मैसेजिस आहिनि जेके उहे पाण शामिल करण जी कोशिशि कयूं था, ऐं ॾिसूं था त असां सां गॾु हाणे केरु हूंदो शामिल। पर मुंहिंजे ख़्याल में पाण हिकिड़ो मैसेज शामिल करे वठूं। शामिल कयो जी।
1: थरपारकर गुंगियो खां नियाज़ नोड़ियो, नियाज़ नोड़ियो जो सीटूं
0: थैंक यू। सिटुनि जेतिरो टाइम कोन्हे, असां न्यूज़ ॾांहुं वधंदासीं, इन करे ब्रेक हूंदो, ऐं ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं। फ़िलहालु ट्रैक गॾिजी ॿुधूं पिया, पाण गॾिजी ॿुधूं पिया, ट्रैक आहे जी ज़ामिन अली जो, अचो त गॾिजी।

0: 36 36 8 ऐं 0312 34 01 287 खात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी जिंदगी।
1: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।
3: या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: जी मैसेज शामिल किया।
1: दे फतेहपुर खां आसिफ अली हालो हाकिम हालो
0: थैंक यू वेरी मच आसिफ अली हालो एंड हाकिम हालो थैंक यू। बियो मैसेज कें जो है

0: जी भक्षण थैंक यू इन बो मैसेज कह
1: जबार शाह
0: जी
1: सबूर शाह
0: जी अच्छा जी मैसेज जो है ना वो छा जो आरफा न्यू आर जी है इन करे कंटिन्यू उन लाइन से शामिल करने की कोशिश करे पई जो स्क्रीन पे अचन था थोड़ो इनके डिसी वैसी असा शामिल करें पे फतेहपुर का जो बो मैसेज है वो पौतो है जी आप कुछ जो मैसेज है उन थोड़ा अंदाज अड़ो है नंढड़ी कैनरी अदी हो पर वो असा सही नमूने को पौतो है ईमान बुधे पे भलीकार आर जे अमानुल्ला शाह असा बुधे पो अब्दुल जबार शाह बुधे पो असा गड अब्दुल सबूर शाह बुधे पो अब्दुल कुदूस शाह शामिल है नंढड़ी बेबी है मुसवेरा शाह तमाम घणी मेहरबानी बेबी जवेरिया शाह वेलकम चो आरफा आर जे अमानुल्ला शाह एंड प्यार प्यार बारन के
1: वेलकम आर जे

0: अमानुल्लाह शाह ऐं ॿारनि खे
1: थैंक यू अदा आर जे अमानुल्लाह शाह साहब ऐं प्यारा ॿारो तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी जो तव्हां असां शामिल थी चुका आहियो वेलकम चवंदासीं ऐं सर न्यू आर जे को वेलकम आर जे अमानुल्लाह शाह इहो मैसेज मोकिलियो आहे अब्दुल जबार शाह सबूर शाह साहब बेबी जेका नंढड़ी आहे बेबी जो नालो मूंखे विसरी वियो वञे थो ज़रे ज़रे जवेरिया शाह अच्छा जी जवेरिया शाह ऐं बेबी मुसवरा शाह जे पारां तव्हांखे वेलकम आहे
0: थैंक यू
1: प्यारा ॿारो थैंक यू भलीकार ऐं आर जे अमानुल्लाह शाह अहिड़े क़िस्म जा चार मैसेज गॾु गॾु मोकिलिया आहिनि चार न बल्कि पंज मैसेज पंज दफ़ा थैंक यू चओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ईअं पंज दफ़ा
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू
1: सबक पको आहे ओके थैंक यू अमानुल्लाह शाह साहब ऐं प्यारा ॿारो वेलकम तव्हां सभिनी खे चवंदासीं तव्हां सभिनी असांखे तमामु घणा मैसेजिस मोकिलिया आहिनि ऐं थैंक यू भलीकार चवंदासीं हिकिड़ो ॿियो मैसेज जेको उहो बि राजे खानाणी जे वेझो पहुतो आहे ऐं ॾेवाणी फ़क़ीर खां राजे खानाणी खां जी जना फ़क़ीर इब्राहिम लंजवाणी साहिब ऐं फ़क़ीर हसनैन रज़ा लंजवाणी साहिब ऐं तमामु घणी महिरबानी ऐं भूरो ख़ान लंजवाणी साहिब ऐं मामा अलण फ़क़ीर लंजवाणी साहिब सभिनी जी महिरबानी वॾा वॾा ही ॾिसो ॿुधो ॿुधो ही अनवर हुसैन विस्तरे जो आवाज़ आहे ऐं आरिफ़ा ॿुधो वरी आरिफ़ा ॾिसो न जॾहिं मायूं कावड़ कंदियूं आहिनि न छोकिरियूं पोइ फनकार हीअं चए पियो ॿुधो ऐं मिंथू आहिनि साम्हूं छा थी चवे अदी वेचारी जेका हिन में वेठी आहे

0: जी अरे कुछ मैसेजेस इन शामिल करे बैठो
1: जयजा का शाहिद भाई थैंक यू
0: जी गोठे जयजा का शाहिद भाई थैंक यू भाई जान अरफ तम थैंक यू चो
1: थैंक यू भाई जान
0: बो कैसे मैसेज
1: देवाणी फकीर लग राजो खानाणी खां फकीर इब्राहिम लंजवाणी आरजे साई अमन अल शाह मीर गुलाम आबास सालपुर
0: थैंक यू वेरी मच मेहरबानी फकीर इब्राहिम आरजे अमन अल शाह के टालपुर साहब के याद किया थैंक यू आरजे तबसुम असा के ज्वाइन कर बुधे पी आरजे तबसुम तमाम घणी मेहरबानी तक ज्वाइन किया है इंशाला जडे शो जल्दी कंदा तो वे शो तुम ड्यूट शो हूं इंशाला पान जहा गजी उ शो असाजी पब्लिक बुधी सी काफी वक्त असाजे रेडियो के माइक्रोफोन तक मोकल ते आयो कमर्शियल ब्रेक शॉर्ट ब्रेक भी हों

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जी वेलकम बलिकार खुशामदी जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जो हम बुधो पे जी एफ एम मातली बदी 90.4 अमा जे आर जी अमा सण मुखातिब आहिन
1: अरफा नाज
0: ऐं यूनिस बकारी जी अमा जे मैसेजेस भी शामिल कंदा हलूं लिखो एम टी आई स्पेस दियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो 88 81 888 ते मैसेज मोकिलियो कुझु मैसेजेस आहिनि जेके अरफा शामिल कंदी जी अरफा
1: लुटको मोरी सांगर था ममन साले लगारी लाल बख्श लगारी बलावल बिलावल लगारी ओसामा लगारी
0: तमाम घणी महिरबानी लिखत होरा लुटको मोरी या भाइरो थैंक यू अवां सांगर का बुधो पिया किरोड़े कुर्बत हां जा आई कुंडरी खां केंजो मैसेज पता जी कुंडरी खां चौहान कुमार कोहली साहब असके बुधे तो संगीता पारस एंड अनीता डॉक्टर संगीता अनीता पारस थैंक यू जी बे केंजो मैसेज है शामिल कयो
1: चोर जमाली खान नाज नांगर खान जमाली मोहम्मद हाशिम जमाली
0: ठीक है
1: मोहम्मद महराब जमाली गुलाम कादर जमाली लिखियो आयस त प्रोग्राम खूबसूरत
0: अच्छा प्रोग्राम खूबसूरत है ये है ना
1: जी
0: प्रोग्राम खूबसूरत थींदो अच्छा
1: खूबसूरत पे करो वेलकम मुबारकबाद
0: नहीं नहीं मैं तहां खां तो पुछा तो प्रोग्राम खूबसूरत थींदो आ खूबसूरत वा सूरत माना सुठी शिकिल ठीक आ ऐं खूबसूरत खूब माना सुण
1: लाजवाब थी सघे थो
0: लाजवाब थी सघे थो ऐं सुरीलो थी सघे थो पर अदा लिखियो आहे खूबसूरत त पोइ खूबसूरत हूंदो पर प्रोग्राम लाइ हमेशा चइबो आहे त भई फनकार लाइ सुरीलो लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो आहे ऐं कंहिं बि ग्रीनरी आहे खूबसूरती आहे या उनखे खूबसूरत चइबो थैंक यू वेरी मच लखतारा नाज़ नगर खान जमाली एंड दोस्तो अवां चूहड़ जमाली खां ज्वाइन कयो

0: कुछ अधिक मैसेज चिवियन शामिल कर गोट है मोहम्मद बख्श का अली असगर बुधे पो अली असगर तमाम घड़ी मेहरबानी लख थोरा अवजा तुम सा ज्वाइन किया है जहीर अवजा कजी बुधे पो तमाम घड़ी मेहरबानी जहीर अली असा के ज्वाइन किया है जनाब मीर गुलाम रसूल अच्छा जी मीर गुलाम अब्बास साहब बुधे पो राजो खानाणी का फकीर इब्राहिम अली रजा शायर हसन के बुधंत हसन खासकेली साहब आर जे मोहम्मद खान मेहरी के सलाम अच्छा सिख भर सलाम वालेकुम असलम हवाउन आधार से सलाम पहुंचाई पे थैंक यू वेरी मच आई जनाब असा मैसेज पौतो है दाऊद सोलंगी साहब जो अवा असा बुधी रहा हो पीरवाह का पीरवाह मातली का तमाम घड़ी बचा पठान बुधे तो शकील पठान लिखो है गोठ तवजो है मुरीद चालपुर किरोड़े कुर्ब सुणा साई थैंक यू वेरी मच भलीकार थैंक यू जो तुम बुधो प्या थैंक यू खुश हो जो कोठ बिल्लू पवर का शहर मीरपुर भठोरे का असा के ज्वाइन कयो आहे महबूब अली पवर साहब अवां जी मेहरबानी तवां जो बियो जो नालो मिसिंग में हलो वियो है सखी शाह दीवाने जे गोठ है खबड़ भील उतां का असा के ज्वाइन कयो आहे उदासी रामचंद साहब उदासी रामचंद तुम तमाम घनी मेहरबानी रामचंद बील परवेज पाकिस्तानी बुधे तो सोनो शावेज सुल्तान बाबा बुधन था अवज मेहरबानी अवज शामिल आहे नंदड़ी शहनाज परी तमाम घनी मेहरबानी वेलकम चौंदी तवा के गोठ हाजी मलूक सहतो का असा के मैसेज पौतो अदा यूनुस सलाम अस्सलाम वालेकुम यो काशिफ सहतो साहब एहसान सहतो लिखो है मैसेज गोट अच्छा तुम चौदह अहमद मुगल बुधा अहमद मुगल असा प्ले कर चुका मेहरबानी गोट सौराब खान निजामानी का मोहब्बती मंगण निजामानी नंढड़ो एहसान निजामानी बुधन पे किरोड़े कुर्ब जी आरिफ अच्छा चौदह बुधंदड़न के मैसेज कन
1: जी मैसेज कन एमटीआई
0: की कन मैसेज तरीको बुधा
1: एमटीआई
0: थोड़े स्पेस
1: स्पेस
0: गोठ जो नालो
1: नालो शहर जो नालो
0: मैसेज सेंड के पेंजो नालो लिखन जरूर
1: नालो लिखन
0: पर सेंड किथे कन 8881
1: 8881
0: माना 8881 ते मैसेज मोकले छो अच्छा थोड़ा थोड़ा सबक कचो है आरफा नहीं है ना वो घबराए पी तो खबर कने बुधंदड़ छा समझन तो मां मैसेज को पढ़ी सका छा सनम मारवी जो आवाज कोने पर आवाज कें जो खबर है तांके कोने खबर मां बुधाया
1: मुखे कोने खबर
0: ताई कोने खबर ही आहे समीना कमल जो आवाज शायर हनीफ मेमुन साहब जी शायरी है गुल का सुठा मानो
1: जी
0: तो जो वक्त की पे गुजरे
1: दादी सुठी शायरी है
0: छाती चवे माई वरी बुधाए
1: वक्त की
0: न गुल का सुठा मानो तो वक्त की गुजरे

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: छावा के साह जे बीमारियन सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग कर छड़ियो आहे, साह खणण में तकलीफ आहे, खंग नथी छड़े ऐं दायमी साह जे तकलीफ होजण जे करे अवां जे फेफड़न में तमाम घणी तकलीफ आहे, त पोइ हाणे अवां परेशान न थियो। छाकाण जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज अहमद जूणे जो MBBS DTCD TB दम एलर्जी ऐं फिफड़न जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में। त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-12-02-76-840। मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03-13-086-3163।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842। अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमार डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि बीमारियुनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जी पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: बवासीर जे तकलीफ़, सख्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जड़न मसलन में मुब्तला आयो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां शाम जो 5 वगे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाट। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-879-0312-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जनाब वेलकम बलिकार खुश आमदीद जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जी जी एफ एम मातली 90.4 के वहां बुधो हमारे आरजे और मेजबान तासा मुखातिब आहिन मुझे नालो आहे यूनिस बकारी ऐ मुसा शामिल आहे
1: आरफात नाज
0: जी अरफनाज वेलकम तांगे चंदासी छो तो ताने फर्स्ट शो आहे की पे लगे फर्स्ट शो तांगे
1: ॾाढो
0: सुठो भी लगे अच्छा वेलकम चवंदासीं थैंक यू इनशाला अञा वधीक सुठा शो थींदा असांखे नफ़ीस खट्टी साहिब ॿुधे पियो मियां पोट तलहर खां ऐं नफ़ीस खट्टी साहिब तव्हांखे वेलकम था चऊं तव्हां चओ नफ़ीस खट्टी खे वेलकम
1: वेलकम अदा नफ़ीस
0: तमामु घणी महिरबानी थैंक यू ऐं अॼु असां सां जेका कॉपरेशन आहे न उहो ॿिनि माण्हुनि जो जारी आहे छो त हितां खां असांजी जेका शो आहे उहा इंजीनियरिंग जेका टीम असांजी आहे उन्हनि में अरब नवाज़ ख़ासकली साहिब शामिल आहे ऐं दानिश बकारी साहिब शामिल आहे सो अरब नवाज़ ख़ासकली साहिब ऐं
1: दानिश बकारी साहिब
0: थैंक यू वेरी मच अच्छा अरफाज तमामु घणा मैसेज आहिनि जेके असां आया आहिनि उहे शामिल कंदा हलंदासीं हिकिड़ो मैसेज जेको हिन महिल स्क्रीन ते मौजूद आहे मां शामिल करे वठां उन्हनि खे वेलकम चओ लियाकत अली ख़ासकेली साहिब फरीद ख़ासकेली ऐं शाहिद अली ख़ासकेली ऐं देह कारी मोहम्मद अली लग वेझो ॻोठु आहे कहिड़ो ॻोठु आहे जी जनाब दरगाह आहे अब्दुल्ला शाह उतां खां असांखे अब्दुल्ला शाह जार वारो उतां खां जलालाणी फार्म खां असांखे इहो मैसेज पहुतो ऐं भाइरनि खे भलीकार था चऊं वेलकम था चऊं तव्हां बारफा वेलकम चओ
1: वेलकम अदा
0: ऐं ॻोठ आहे रमज़ान काके पोटो वाह वाह तव्हां होशियार आहियो पढ़ाई में रमज़ान काके पोटो खां असांखे ज्वाइन कयो आहे मुनवर ख़ासकेली साहिब ऐं रमज़ान काके पोटो जो ॻोठु ॾेई शहर ऐं डिगड़ी रस्तो जेको आहे उते आहे उतां खां तव्हां असांखे मुनवर ख़ासकेली ॿुधो पिया भलीकार चवंदासीं वेलकम थैंक यू ऐं ॻोठु मुरीद टालपुर खां असांखे ज्वाइन कयो आहे नवीद पठाण ऐं अकील पठाण वेलकम
1: वेलकम अदा
0: भलीकार अदाब थैंक यू ऐं ॻोठु आहे मोहम्मद बख्श दलवाणी उतां खां असांखे ज्वाइन कयो आहे शाइर ज़हीर अली

दलवाणी साहब अवन तमाम घणे मेहरबानी हो अवन के तो शादी जो को सॉन्ग बुधरायो ॾिसंदासीं कोशिश कंदासीं हाज़िर साईं ॿुधाईंदासीं तमामु घणी महिरबानी ऐं नंढड़ो दाऊद सोलंगी असांखे ॿुधे पियो पीरवा मातली खां नंढड़ा दाऊद तमामु घणी महिरबानी तव्हांजो ऐं ॻोठ सोहराब खान निज़ामाणी खां मोहबती मंगण निज़ामाणी तव्हां नालो वठो मोहबती मंगण निज़ामाणी चओ मंगण निज़ामाणी ऐं नंढड़ो अहसान निज़ामाणी ऐं सोहराब खान निज़ामाणी इहो ॻोठु आहे कड़ियो गंवर जे वेझो ऐं साईं ऐं उतां खां असांखे ॿुधे पियो किरोड़ी कुर्ब ऐं साईं हाफ़िज़ मोहम्मद निज़ामाणी साहब जो ॻोठु आहे यकीन असांजो उहो क़ौमी शाइर जंहिं ते सिंध नाज़ करे थी उतां खां मोहबती मंगण ॿुधे पियो भलीकार ऐं अकील पठाण साहब हिकु दफ़ो ॿीहर ऐं ईमान पठाण एंड नंढड़ी सदफ़ शायदि ईअं लिखियल आहे पर नालो वधीक कटिजी वियो आहे तमामु घणी महिरबानी ऐं सुजावल खां सागर अली खासकेली साहब ॿुधे पियो लिखे थो त भाई शाइर शेर अली बग्गा साहब जो असांखे ॿुधायो ओके जनाब कोशिश कंदासीं ट्रैक अची वियो आहे

0: तव्हां आर जे मोहम्मद खान खे सिकबर सलाम। अच्छा जी वालेकुम सलाम, जेकॾहिं साईं ॿुधंदा हूंदा त वालेकुम सलाम ज़रूर चवंदा। तमामु घणी महिरबानी, मां चाहियो था कोशिश कबी सोणा साईं हाज़ुर। ऐं झुड़बी खां गुलाम मुस्तफ़ा बलोच ऐं बिलावल बलोच ॿुधनि था भलीकार। लखा ॾिनू जूणे जो साहब असांखे ॿुधे पियो राजो खानाणी खां भलीकार। लखा ॾिनू जूणे जो साहब जी जनाब ट्रैक ॿुधी था वठूं, मूंखे छॾे न वञ राणा। ऐं मिलंदासीं हिकड़ी शॉर्ट ब्रेक खां पोइ। ऐं आरिफा छा था चओ?
1: हाणे
0: वठंदासीं ब्रेक। तव्हां हुई ब्रेक में घणो खामोश रहो था, ब्रेक खां विच में त एंट्री वठो, कुझु ॻाल्हायो। हीउ हिकिड़ो मैसेज शामिल करे वठो जेको स्क्रीन ते साम्हूं नज़र अचे पियो।
1: चोर जमाली आहे, सैफ अला ख़ान जमाली, सनावला ख़ान जमाली, अब्दुल हफ़ीज़ ख़ान जमाली, मोहम्मद सुमार मोहम्मद जमाली, जुमन जमाली।
0: जी जी,
1: प्रोग्राम लाजवाब ज़बरदस्त शो आहे। वेलकम।
0: थैंक यू थैंक यू। ऐं तव्हांखे वेलकम चयो अथसि त तव्हां थैंक यू चओ।
1: थैंक यू अदा, महिरबानी।
0: जी मज़िस ख़वातीन हज़रात, जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जे जी एफ एम मातली बदीन 90.4 खे अव्हां ॿुधो पिया। मोहबत ने मुर्कुनि जो मेलो, पंहिंजा पंहिंजा अहसास, अव्हां जा ख़ूबसूरत मैसेज ऐं गीन खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं। आर जे आरिफ अनाज़ ऐं यूनिस बकारी थोरी देरि जी ख़ामोशी खां पोइ अव्हां सां गॾु।

0: अरफा हिकड़ो वधिक मैसेज चुका है, शामिल करे वठो
1: जी। डॉक्टर शम्स ए डॉक्टर मोहम्मद असा बुधी रहा है, मेहरबानी अदा है आदि तवाजे तवा असा मोहब्बतन सा बुधी रहा है
0: जी। आदि डॉक्टर शम्स कंवल ए अदा डॉक्टर मोहम्मद, थैंक यू वेरी मच भलीकार ता सके बुधो पिया। की तो लगी छो ता के आरिफ अनास जो आवाज ता के पे लगी बुधाई जो ठीक है।

0: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ।
1: मोर को दिल्ली राणा, मोर को दिल्ली।
0: आवाज की डोर से बंधा हुआ।
2: GFM 88 नेटवर्क, सुर की आवाज।

0: ओके जनाब, वेलकम बलिकार खुश आमदीद शो पुजाणी ते पहुचण वारो आई आरजी
1: आरजी
0: सनास आई यूनुस बकारी वणण वारा छो तो शो पुजाणी ते जरे पहुचंदा आहिनि आरजी उदास थी वेंदा आहिनि छो तो उन्हनि जो हूंदो आहे सफ़र हवाउनि जो हर हूंदी हुन में उन्हनि खे ईअं लॻंदो आहे ॼण शो ख़तम कोन्हे थियो असां ख़तम थी वियासीं हा न
1: जी बिल्कुल
0: ईअं न आहे छो ईअं न आहे शो हमेशा जारी रहंदा आहिनि ऐं जेके हवाउनि जा जेके सफ़र आहिनि उहे इनशाला जारी रहंदा आहिनि ओके मैसेज कुछ इन जी शामिल करना है पढ़ी वो शामिल करे वो मैसेज भोरियाई गोठ असके याद कर मोहम्मद हसन खाखण अजीजुल्ला खाखण हफीजुल्ला खाखण रजाउल्ला खाखण शादी खान खाखण लिखन था अस बनी में बुध पाया तमाम घनी खुशी थी तो बनी में बुध पाया बनी में असें ज्वाइन करने लाबानी थैंक यू भलीकार चौंदी नजीर बशीर जमाली नवीद जमाली मेहताब अहमद जमाली मोहम्मद रमजान जमाली प्रोग्राम के पसंद कर नाला गलत वरता है अच्छा नाला गलत वरता है माना कि मतलब थोड़ा असा बुधा नजीर अहमद जमाली बशीर अहमद जमाली नूर अहमद जमाली मेहताब अहमद जमाली जमाली अस नाल तकड़ तकड़ में थी वो क्या गलती थी वी खैर इंसान है तुम चोट जमाली का बुध पे भलीकार थरपारकर के गोठ गूंगियो का अब्दुल जब्बार नोहड़ियो बुध पो इमदाद अली आवाज जबरदस्त आहे ममताज लाशारी बुधायो ममताज लाशारी मुझे ख्याल में असा शो जी शुरू में प्ले कर छो हो इनशाला वरी हाँ जो शो थो तेमें ममताज साहब के बुधी सकता

0: जी मैसेज शामिल किया गोठे सौरभ निजामानी
1: सौरभ निजामानी का मेहताब
0: मोहब्बती मंगण निजामानी मोहब्बती मंगण कावड़ जी फोन तो चे तो मेहताब मुझे नालो ही कोने मोहब्बती मंगण निजामानी ऐ नडड़ो एहसान निजामानी बुधन था न
1: जी
0: हाफिज मोहम्मद निजामानी साहब जो नालो लिखना है मोहब्बती मंगण निजामानी साहब हाफिज साहब वट जडे बिंदा आयो तो उते मंगण मिलन ही दो डाडो जबरदस्त माहौल हो साई हाफिज मोहम्मद निजामानी साहब जी छाव में जे 5 मिनट गुजारे हुंदा उन जे ला यादगार हुंदा हुए तो हाफिज निजामानी साहब जो शहर में हमेशा रेडियो से अवे बुधाई आया तो नारियल जड़ी नारी हुई काठ जड़ो घोट हो जड़ी नारी हुई काठ जड़ो घोट हो वो वेचारी छा करे जो सगो संद सौट हो वाह वाह तो कहो आरफा
1: वाह वाह वाह वाह
0: बियो के जो मैसेज आ
1: बचाओ पठान शकील पठान नवीद पठान गोठ मुरीद टालपुर खान
0: कुछ मरीज चालपुर का बचायो पठान साथी हो तमाम घनी मेहरबानी मोहब्बतू भलीकार खुश आमदीद वडा वड़ा वहां जा जो अवां असां के ज्वाइन कयो कुर्ब तहां जा थैंक यू अज तो मैसेज एतरा घना मैसेज आया जो मैसेज शामिल कंदे कंदे कंदे कंदे वक्त वियो आए गुजरी

0: साईं इब्राहिम शाह जो मैसेज पहुतो आहे वेझो गोठ आहे बाबू भील कंदा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आवां लिखियो आहे त मासी आरफा नाज आपका आवाज वेरी नाइस है एंड अच्छा बहुत शो अच्छा लगा
1: थैंक यू मेहरबानी अदा
0: थैंक यू भाणेजा मासी चयो ओके त पोइ हिकिड़ो ट्रैक अची चुको आहे आख़िरी ट्रैक हूंदो आहे हुन में हूंदा आहिनि दड़का हूंदा आहिनि न त पोइ दड़कनि वारो हिकिड़ो ट्रैक ॿुधी था वठूं जंहिं में ही जेका फनकारा आहे उहा असांखे ॿुधे पई ऐं छा थी चवे ॿुधो

0: डॉक्टर हिन्ना साहिब असि बुधे पई नडड़ो अवेश कुंभार बुधे पो एंड डॉक्टर शम्स कमल बुधे पई एंड डॉक्टर मोहम्मद कुंभार बुधे पो सभी के वेलिका तमाम घड़ी मेहरबानी वड़ा वड़ा वाजा तुम असि जॉइन किया है अजोक शो सुठ लगो है अरफा तुम सभी के थैंक यू चो
1: थैंक यू मेहरबानी शो बुधन
0: नाला तो वो कंखे थैंक यू बचो
1: डॉक्टर शम्स कमल डॉक्टर मोहम्मद कुंभार नडड़ो अवेश
0: डॉक्टर हिन्ना ओके थैंक यू सभी जो मेहरबानी लख थोरा खुश हो जो जी तो अजो को शो अवे कि लगो यो फर्स्ट शो आरिफा नाज जो अजा कुछ ऑर्जेज असन मुखातिब थी कुछ डी में असा कुछ नेटवर्किंग शोज इन उधी असि चाहूं था तो शो हाँ अड़ा हुजन जैमें तहके टहक बुधण में अचन जैमें लुड़क उगण वाली गाल हुजन जैमें गोढ़ा उगण वाली गाल हुजन जैमें मुस्कुराहटन जो गाल हुजन जैमें प्यार हुए पैंजाइप हुए सजी सिंध मोहब्बत के गुलाबन से महकी उठे आरफा पान उन आगे जो मोकलाइन जो वक्त अची वे मुझे ख्याल में त कुछ जन मैसेजिज असा के शामिल करना है आरजी शहबाज मला साहब थैंक यू।

0: जी त पोइ अरफा हाणे भला मोकिलाइजे या आख़िरी मैसेजेस अञा अचनि पिया हाणे कीअं कजे भला मैसेज त एतिरा सारा खोड़ सारा आया आहिनि जेको शामिल कंदे कंदे बिल्कुलु ॿ कलाकनि जी ख़बर ई कोन पई पर असांजी टीम में जीअं मूं तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो त असांजी टेक्निकल टीम जेका आहे उहा असांखे असिस्ट करे रही आहे ऐं असांजो हीअ आवाज़ तव्हां ताईं पहुचाए पई त जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क फैमिली जा जेके बि हिसो बणजंदड़ असीं सभई माण्हू तव्हांजा थोराइता आहियूं सोहराब निज़ामाणी खां मोहबती मंगण निज़ामाणी साहब ऐं नंढड़ो अहसान अली निज़ामाणी साहब हिकु दफ़ो ॿीहर असीं वरी बि अवांजा थोराइता आहियूं ऐं अवां चयो त आबदा परवीन ॿुधायो आबदा असां प्ले करे चुकासीं शुरूअ में ऐं ॻोठु आहे रमज़ान काके पोटो हुतां खां मुनवर ख़ासकेरी साहब हिकु दफ़ो वरी बि अवां यादि कयो अवां जूं महिरबानियूं मण महिरबानी जी अरफा पोइ मोकिलायूं टाइम ख़तम थी चुको आहे शो जो ईअं न
1: जी
0: शो जो टाइम ख़तम थी चुको आहे त पोइ इनशाला वरी ईंदड़ ख़मीस ते अवां आरिफा नाज़ खे यूनुस बकारी खे ॿुधंदा ऐं जेको नेटवर्किंग शोज़ आहिनि उन्हनि में मुंहिंजी जेका थोरी तब्दीली आई आहे त मां हाणे अवां सां सूमर अंगारो ऐं अरबा जी मुखातिब हूंदसि शाम जो 5 वॻे खां 7 वॻे ताईं अञा कुझु जेके नवां प्रोग्राम आहिनि आर जे तबसुम जो शो बि तव्हां ॿुधी सघंदा पर उहो डिटेल तव्हांखे असां बाद में ॿुधाईंदासीं त उन शो कॾहिं हूंदो फिलहाल सेवा खे मोकिलायूं पिया त पोइ आर जे
1: मोकिलाए थी
0: ऐं पंहिंजे मेज़बान यूनुस बकारी खे वरी मिलण ताईं मोकल ॾियो हिन दुआ सां त जिते तव्हांजो पेर हुजे
1: उते ख़ैर ई ख़ैर
0: ऐं ख़ुशियुनि जा ढेर हुजनि पोइ सिक सलामत साथ सलामत अलाह निगेबान
1: अलाह निगे

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: इसके ऊपर तीन क्लासेस थी, 20 से ज्यादा बच्चे जो है इसमें शहीद हो चुके हैं और टीचर भी इसमें शहीद हो चुकी है और 47 के करीब जख्मी है, 25 जो है उनको शिफ्ट किया गया लेडी रेटिंग हॉस्पिटल। एक्चुअली 10 मैंने आपको बताया तीन क्लासेस थी उसमें बच्चे थे और अभी मजीद हमें पता है अल्लाह ताला खैर करें लेकिन हलाकतों का खदशा ज्यादा है। कोशिश कर रहे हैं, फौरी आपके सामने तंग नहीं है, रेस्क्यू में मुश्किलात आ रही है।

छावा के साह जे बीमारियुनि सबबि साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 2 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में। त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 2 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल, मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03120276840।

0: जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे हर आचर ते सुबह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर बेचैनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अलमदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नंबर 142।
4: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वगे खां शाम जो 5 वगे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद।

0: ऐं हा शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
0: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छावा के साह जे बीमारियुनि सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे

0: पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जुणे जो MBBS DTCD TB दम एलर्जी ऐं फिफड़न जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जुणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में। त पोए देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छावा के साह जे बीमारियुनि सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जोणे जो MBBS DTCD TB दम एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जोणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में, त पोए देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: छावां के साह जे बीमारियुनि सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBDTCD टीबी, दम, एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में। त पोए देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840। मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03-1308-6316-3।
3: खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1310-31-43-842।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
6: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे याद रखंदा दाइम नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचैनी कमज़ोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
10: सुनते रहो FM 90.4

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: छावा के साह जे बीमारियुन सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छॾियो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छॾे ऐं दाइमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़नि में तमामु घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में। त पोए देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK अस्पताल मातली, नोतकाणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: छावा के साह जे बीमारियन सबब साह में तंगी आहे, सहक तंग करे छड्यो आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, खंघ नथी छडे ऐं दायमी साह जे तकलीफ़ हुजण जे करे अव्हां जे फिफड़न में तमाम घणी तकलीफ़ आहे, त पोइ हाणे अव्हां परेशान न थियो। छाकाणि जो मातली ऐं आसपास जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो MBBS, DTCD, TB, दम, एलर्जी ऐं फिफड़न जे बीमारियुनि जो माहिर हर जुमे जे ॾींहुं शाम 3 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो। जी हा, अव्हां जो ॼातल सुञातल डॉक्टर नियाज़ अहमद जूणे जो हाणे अव्हां जे शहर मातली में, त पोइ देर न करियो ऐं हर जुमे ते शाम जो 3 वॻे खां 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहब सां मशवरो करे सघो था। एड्रेस MK इस्पताणी चौक, नया पुल, बदीन रोड, मातली। वधीक राबते लाइ हाजी मोहम्मद अनवर सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-1202-76840।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।